0: गांधी जी से पूछना चाहती हूँ कि आप जो महिला सशक्तिकरण की गुहार लगा रहे हैं, अगर आप इतना ही महिलाओं के सशक्तिकरण चाहते हैं तो आपने और आपकी कांग्रेस पार्टी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम की पुरजोर मुखालफत क्यों करी? लाल बटन दबाकर इस बिल के विरोध में वोट क्यों किया? इस विधेयक को गिराया क्यों? क्यों? क्योंकि आपके लिए नारी सशक्तिकरण केवल और केवल एक चुनावी जुमला है राहुल गांधी जी।
1: कांग्रेस पार्टी के एक अहम नेता ने महिलाओं और महिलाओं के नेतृत्व के समर्थन की बात की है, मैं उनसे कहना चाहती हूँ विनम्रता पूर्वक, कृपया प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम को कि देश की महिलाओं को संसद में नेतृत्व करने के लिए 33% आरक्षण का बिल त्वरित रूप से लागू हो, इस प्रयास में प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें।
2: नहीं नहीं, वो जो गैप हो गया है वो गैप पूरा रहेंगे, क्योंकि जैन जी जिस तरह उसका विजन है, वो जो देश को देखना चाहते हैं, सोसाइटी को देखना चाहते हैं, जिस तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके साथ रोटी कपड़ा मकान एडुकेशन जॉब इसका संपर्क है। ये भाजपा जिस तरह देश चला रहा है उसके साथ जैन जी का ये जो विजन है उसका कोई संपर्क नहीं है, जैन जी रूठे हुए हैं।
3: They have understood that the youth are against them. The CJP agitation and various youth agitations have made them understand that people, youth are against them. Because of they think that they can collect youth. But the youth raise certain important issues like anti-NEET exam, NET exam. All those things will go against this government. They have understood that next time they cannot win. That is why they want to somehow appease the youth. So they are doing all those things.
4: And politics, as expected, has erupted over Rahul Gandhi's student outreach in Pune. BJP has hit out Rahul's event, alleging that the party brought a paid crowd and paid influencers to increase the attendance at the event. BJP has also questioned the impact of Rahul Gandhi's outreach, saying there is no real impact on the youth in ground. The grand old party has hit back, rejecting BJP charges. Congress says students and youth, they came to listen to Rahul Gandhi and share their thoughts on the issue, and no one was brought to the event by offering money.
1: Well, Congress ke us neta ke manch par Hindu dharm ko lekar baatein hui. Unhone धर्म का आह्वान किया है। मैं उस अहम नेता को एक और निवेदन करती हूँ, वंदे मातरम में भी जिन पंक्तियों को कांग्रेस मुख्यालय में रोका गया उन पंक्तियों में माँ दुर्गा का उल्लेख है। वंदे मातरम का पूरा मंचन पूरा गायन कांग्रेस मुख्यालय में हो, ताकि महिलाओं के प्रति जो उन्होंने रुचि और रुझान दिखाया है, जो उन्होंने कहा कल अपने कार्यक्रम में, कांग्रेस के नेता अपने शब्दों को आकार दे सकते हैं।
5: महाराष्ट्र की जो जेंजी, महाराष्ट्र के जो युवा आज इस मैदान पर थे, 25,000 लोग, कोई गाड़ियां नहीं लगाई गई, किसी को पैसा नहीं दिया गया, सारे के सारे लोग ऑर्गेनिकली यहां पर आए। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, स्टेज पर आकर तो उन्होंने महिला अधिकारिता की बात कही, लेकिन महिलाओं को अधिकारिता देने का सबसे क्रांतिकारी कदम महिला आरक्षण बिल है, जिसको राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, जिसके खिलाफ वोट कर रहे हैं, महिलाओं को अधिकार देना नहीं चाहते। मैं ऐसा मानता हूँ, खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है।
4: Well, a Batman-themed portrayal of Rahul Gandhi right outside the Congress headquarters has triggered a fresh political row. The poster shows Rahul in a Batman-style avatar with the message saying he's a silent guardian. Rahul's portrayal of Batman has now become the latest flashpoint between the Congress and the BJP. The Congress has embraced the heroic portrayal of Rahul Gandhi, while the ruling party has slammed the move, questioning the political message. You have Pawan Khera, who has praised the image, but BJP has hit back with spokesperson

0: Nalin Kohli questioning the choice to portray Rahul Gandhi as a comic book character.
1: I'm not surprised if people are comparing him with Batman. Batman didn't have any superhuman capabilities. He had the conviction. He had the resilience. He had this hatred for injustice. That's what Mr. Gandhi also has. He doesn't need a cape. He needs a white t-shirt.
2: Rahul Gandhiji being portrayed by his party as Batman. I don't know how appropriate that is, because that is a cartoon character from a comic series. Now, that is prone to interpretation by some set of people that, you know, he's being projected as a cartoon character from a comic series. Now, if the Congress party believes that that is the appropriate way they wish to project their leadership, who's the leader of opposition in the country, then really it's for them to take a decision on it.
0: Sugar prices are now at the center of a fresh political face-off between the government and the opposition. Congress MP Manish Tiwari has alleged that a significant amount of sugarcane is being diverted towards ethanol production, which he claims is putting the pressure on sugar availability in the country and pushing up the prices. Shiv Sena UBT MP Sanjay Raut has made a similar charge, alleging sugarcane supplies are being diverted for ethanol production, attacking the government over the broader rise in the cost of living. The government has rejected the opposition's claims. Government has said ethanol production is not driving these prices, stressing that the adequate sugar stocks are available in the country and a stable supply is being ensured.
3: चीनी के बढ़े हुए दाम यकीनन सरकार के लिए चिंता का विषय है. सरकार के भीतर इसको लेकर चर्चा हो रही है कि कैसे जल्द से जल्द इसको नियंत्रित किया जाए. जितना प्रोडक्शन अपेक्षित था उसकी बनिस्पत इस बार इतना ना होना एक कारण रहा है, पर मैं मानता हूं कि ये एक टेम्प्ररी फेज है, बहुत जल्द इसको नियंत्रित कर लिया जाएगा.
4: चीनी की कीमतें आसमान छू रही हैं, और सिर्फ चीनी ही नहीं, जो बाकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, चाहे प्याज हो, चाहे आलू हो, चाहे लहसुन हो, जो आम वस्तुएं इस्तेमाल होती हैं, सारे खाद्यान्न पदार्थों की कीमतें आज आसमान छू रही हैं, क्योंकि गन्ना एथेनॉल की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ गाड़ियां ख़राब हो रही हैं. भाई, जिस गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डलता है उसमें अगर गन्ने का रस डालना शुरू कर दोगे तो गाड़ियां ख़राब होंगी, और इसके ऊपर बहुत व्यापक जाँच करने की ज़रूरत है कि ये जो एथेनॉल की ब्लेंडिंग हो रही है इससे किस व्यापारी को, किस व्यवसाय चलाने वाले को फायदा हो रहा है.
5: Sugar prices are soaring and it is causing distress and unrest, not just amongst the farmers and the middle classes, but also politically. So we are here with senior member of Congress, Mr. Pawan Khera, who is going to talk about how the sugar prices are going to impact the.
1: The argument that the government gave for introducing ethanol was that we'll save on foreign exchange because a massive bulk of our foreign exchange gets wasted while when we import crude oil. Now that argument gets defeated. In the process of saving foreign exchange on account of crude oil, now you are ending up spending foreign exchange by importing sugar. What is more important? What is the priority of this government? Food security or fuel security? Ask them this question.
5: Thank you, Mr. Khera. And this is Deeksha Bhardwaj for NDTV.
0: Well, yet another pitch for Tamil Nadu Chief Minister Vijay as the potential prime ministerial face gaining traction within the TVK. The Congress party has hit back at TVK over its growing national ambitions. Congress MP and Tamil Nadu Congress Chief Manikam Tekor has taken a jibe at TVK leaders, saying they are still in the fan club mode. The Congress MP also stressed that the Congress way of working is very different from that of the TVK, drawing a distinction between the two parties. The remarks come after several TVK leaders backed Vijay for a larger national role. Tamil Nadu Minister K. Sengotia said that Vijay has the capacity to rule the nation in the future. Another TVK minister, Jagdishwari, said today's chief minister is tomorrow's prime minister. Voices and reactions on the story.
6: அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம தலைவர் போயிட்டு இருக்கிறாங்க. நேஷனல் லெவலில் ஒரு லீடர் உருவாகிட்டு இருக்காரு. வேற யாரும் கிடையாது, நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் தான், நம்ம அண்ணன் தான். அது இப்பயே வந்து வெரி கிளியரா ஒரு மேண்டேட். அனதர் டூ இயர்ஸ், 2029 பாருங்க எப்படி கேட்ட மாற்றங்கள் வரப்போகுதுன்னு
7: பாருங்க. அதனால நீங்க ரசிகர் பண்ற போர்டில் இருக்கவங்கள நீங்க மௌனம் மாற்ற முடியாது. தமிழ்நாடு இந்தியாவுக்கே தெரியும் இந்தியாவினுடைய சூழ்நிலை எப்படி இருக்குன்னு. அமித்ஷாவும் மோடியும் சேர்ந்து ஒவ்வொரு எதிர்கட்சிகளுடைய அதிகாரங்களையும் பிடுங்குவதிலும் இடியையும் சிபிஐயும் உபயோகப்படுத்தி பயமுறுத்துவதிலும் கட்சிகளை உடைப்பதிலும் ஜனநாயகத்தை இல்லாமாக்குவதிலும் குறிப்பிட்ட விதத்தில் டீலிமிட்டேஷனை எப்படியாவது கொண்டு வந்து அசாம் மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி புது தொகுதிகளை வரைவு செஞ்சு எந்தெந்த பூத்தெல்லாம் பாஜகவுக்கு ஓட்டு போட்டாங்களோ அந்த பூத்தெல்லாம் டாட்டாக கனெக்ட் பண்ணி ஒரு தொகுதியை உருவாக்கி அந்த தொகுதியில் பாஜக எம்பிக்களை உருவாக்குறதுக்காக திட்டமிட்டுக்கிட்டு இருக்கு பாஜக. அந்த ஃபார்முல அந்த ஃபைட்டில் இருக்க நாங்கள். அவர்களுடைய மோடு வேற, எங்களுடைய மோடு வேற.
8: நான் புரட்சி தலைவரோடும் பயணத்தை மேற்கொண்டவன். புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரோடும் புரட்சி தலைவர் அம்மாவோடும் பயணத்தை மேற்கொண்டேன். இரு தலைவரை பார்த்ததற்கு பிறகு அந்த தலைவர் வழியில் தமிழ்நாட்டை ஆளுகிற சக்தி மட்டுமல்ல எதிர்கால இந்தியாவை ஆளக்கூடிய சக்தியாக விளங்கக்கூடியவர் தான் தமிழக வெற்றி கழகத்தினுடைய தலைவர் நம்முடைய தளபதி அவர்கள்.
9: அதுதான் நம்ம தளபதி. எங்க போனாலும் அங்க ஃபோக்கஸ் இருக்கும், டெல்லிக்கு போனாலும் ஃபோக்கஸ் இருக்கும். நாளைக்கு அந்த டெல்லியே கூட அவர் தான் இருக்கலாம்.
0: And a political row has erupted in Punjab over allegations against Chief Minister Bhagwan Mann's wife, Gurpreet Kaur. She has been accused of demanding a 5 crore rupee bribe, allegedly to suppress a rape case. Following the allegations, Gurpreet Kaur initiated legal proceedings against a former judge, calling the claims baseless. She said she was not intimidated in the past, nor would be intimidated now. With this, the National Human Rights Commission has taken a note of the complaint, directed the Punjab government to probe the allegation. Chief Secretary, DGP, they have to submit an action taken report. Congress MP Raja Waring has demanded a CBI inquiry, asking Chief Secretary and DGP to place the facts before the National Human Rights Commission. On the other hand, Aam Aadmi Party has dismissed the allegations as baseless and threatened legal action if an apology is not issued within the next 24 hours.
10: Dekho, mainu lagda hai ki ilzaam laune bahut sokhe ne, bebuniyad gallan karniyan bahut sokhiyan ne, te main jehde vi unhanne bebuniyad ilzaam laaye ne unhan de dat ke samna karan layi puri taiyar ha. Main na pehla ghabrai si na main ajj ghabrauni ha. ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਪਰੂਫ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਈ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
11: ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰਵ ਨਿਆਇਧੀਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਾਤ ਬਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, उनकी पत्नी ने बलात्कार के एक मामले में 5 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया है। ये अत्यंत गंभीर बात है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यदि किसी स्टेट के टॉप ऑफिस के ऊपर ये एलिगेशन लगता है तो ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है। हमने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को डायरेक्शंस दिए हैं कि इस मामले में जांच करें और हमको एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। हमने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के वुमेन सेफ्टी डिवीज़न को भी इस मामले में सूचित किया है। जैसे हमारे पास रिपोर्ट आएगी तब हम आगे की कार्रवाई कर सकेंगे।
12: एलिगेशन लगे हैं उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी और पंजाब के डीजी अपनी रिपोर्ट अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मांगी है, आपके माध्यम से पता चला है कि अगर ऐसी कोई बात है तो वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, और दूसरा उसमें क्या तथ्य हैं उनके ऊपर लिखें ह्यूमन राइट्स कमीशन को। दूसरी बात कि सीएम आर को और सीएम

0: प्रेसिडेंट्स को और मुख्यमंत्री साहब को इसके ऊपर अपनी स्थिति जो है वो स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए कि बात क्या है, मुद्दा क्या है, क्यों ऐसी बात उठ रही है, क्यों ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये तमाम बात.
1: Well, lots more lined up on this edition on the other side of a very quick break. Stay tuned, stay.

0: stepping up their efforts in order to engage with the young voters, growing youth-led political activism and protests. It was the BJP President Nitin Naveen's new team discussing plans for that dedicated Gen Z outreach program. The outreach will include direct interactions when it comes to Gen Z, including engagements with students, and the opposition party members have attacked the BJP's outreach towards the generation. Now, claiming that young voters have lost faith in the party, the Congress has claimed that Gen Z is seeking change and they'll not be supporting the Modi government when it comes to the next elections in 2029. The BJP says that Gen Z will be central to its vision of a developed country. The party says it wants to empower young Indians and give them a greater role.
1: कमेटियां तो बहुत बनाई है। एक बात आपके माध्यम से कहूं, प्रधानमंत्री जी ने शुरू-शुरू में एक सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की थी। आज वो योजना कहां है? कमेटी बना देना बहुत बढ़िया, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कहावत है, कमेटी बना देना ये अपने आप में द्योतक है कि आप उसको टाल रहे हैं। युवाओं के मैसेज को समझिए, उनको एजुकेशन का आर्किटेक्चर बेहतर चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए ठोस ब्लूप्रिंट और एश्योरेंस चाहिए, और ये दोनों आपकी कमेटी के प्रभाव क्षेत्र में नहीं है, प्राधिकार में नहीं।
2: मेरी समझ से जैन जी ही नहीं, जैन उल्फा की भी बस जो है सत्ता मिस कर चुकी है। इन नौजवानों को स्पष्ट दिखाई दे रहा है, उनके बड़े सवाल हैं, रोजगार का सवाल है और शिक्षा में सुधार का सवाल है, और जैन उल्फा अब जगह जगह इसीलिए इन उन सवालों को उठा रही है, अपने स्कूलों के, अपने पाठ्यक्रमों के, शिक्षकों की कमी के। तो ये है, और हमने भी कांग्रेस पार्टी के तौर पर तय किया है कि हम अपने यहाँ भी कुछ जो सवाल उठे हैं उन सवालों का अपनी सरकारों से भी समाधान करेंगे, और आगे पार्टी के रूप में भी कुछ हम वो बनाएंगे, आगे का रोड मैप जो है।
3: आगे चल करके हम सब जैन जी को 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य के साथ जोड़ना हमारी पार्टी का लक्ष्य है, कि जैन जी जिसको नेतृत्व संभालना है वो सक्षम बने और वो उस नेतृत्व के लिए तैयार हो, 2047 के विकसित भारत के संकल्प में सेवा से संकल्प, इसको साथ में लेते हुए जैन जी देश के निर्माण कार्य में लगे, देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करे, इसी को लेकर के रणनीति तैयार।
4: वो अपने पार्टी की ओर से कुछ भी कर सकता है, इसे कोई फर्क नहीं होगा। जैन जी के कोई विश्वास नहीं है इस पर बीजेपी के ऊपर।
5: नहीं नहीं, वो जो गैप हो गया है वो गैप पूरा रहेंगे, क्योंकि जैन जी जिस तरह उसका विजन है, वो जो देश को देखना चाहते हैं, सोसाइटी को देखना चाहते हैं, जिस तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके साथ रोटी कपड़ा मकान एडुकेशन जॉब इसका संपर्क है। ये भाजपा जिस तरह देश चला रहा है उसके साथ जैन जी का ये जो विजन है उसका कोई संपर्क नहीं है, जैन जी रूठे हुए हैं।
6: They have understood that the youth are against them. The CJP agitation and various youth agitations have made them understand that people, youth are against them. Because of they think that they can collect youth. But the youth raise certain important issues like anti-NEET exam, NET exam. All those things will go against this government. They have understood that next time they cannot win. That is why they want to somehow appease the youth. So they are doing all those things.
0: Let's just switch tracks now to Tamil Nadu. The TVK has stepped up its pitch when it comes to the chief minister as a potential face of a prime ministerial candidate, with party leaders protecting, basically really putting out that front as far as protecting him for a larger national role. The Tamil Nadu minister Wilson has said that Vijay is headed towards the national political stage, signalling confidence in his growing political profile. Congress has pushed back against TVK's Vijay for prime minister pitch, maintaining that Vijay cannot be projected as the country's next prime minister and taking a name at the party's growing national ambition. So clearly, the Congress party and the TVK not on the same page as far as the political aspirations go in the future.
7: அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம தலைவர் போயிட்டு இருக்காங்க. நேஷனல் லெவலில் ஒரு லீடர் உருவாகிட்டு இருக்காரு. வேற யாரும் கிடையாது, நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் தான், நம்ம அண்ணன் தான். அது இப்பயே வந்து வெரி கிளியராக ஒரு மேண்டேட். அனதர் 2 இயர்ஸ், 2029 பாருங்கள் எப்படி கேட்ட மாற்றங்கள் வரப்போகுதுன்னு
8: பாருங்கள். அதனால் நீங்கள் ரசிகர் பண்ணுற போர்டில் இருக்கிறவங்கள நீங்கள் மௌனம் மாற்ற முடியாது. தமிழ்நாடு இந்தியாவுக்கே தெரியும் இந்தியாவினுடைய சூழ்நிலை எப்படி இருக்குன்னு. அமித்ஷாவும் மோடியும் சேர்ந்து ஒவ்வொரு எதிர்கட்சிகளுடைய அதிகாரங்களையும் பிடுங்குவதிலும் இடியையும் சிபிஐயும் உபயோகப்படுத்தி பயமுறுத்துவதிலும் கட்சிகளை உடைப்பதிலும் ஜனநாயகத்தை இல்லாமாக்குவதிலும் குறிப்பிட்ட விதத்தில் டீலிமிட்டேஷனை எப்படியாவது கொண்டு வந்து அசாம் மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி புது தொகுதிகளை வரைவு செஞ்சு எந்தெந்த பூத்தெல்லாம் பாஜகவுக்கு ஓட்டு போட்டாங்களோ அந்த பூத்தெல்லாம் டாட்டாக கனெக்ட் பண்ணி ஒரு தொகுதியை உருவாக்கி அந்த தொகுதியில் பாஜக எம்பிக்களை உருவாக்குறதுக்காக திட்டமிட்டுக்கிட்டு இருக்கு பாஜக. அந்த ஃபார்முல அந்த ஃபைட்டில் இருக்க நாங்கள். அவர்களுடைய மோடு வேற, எங்களுடைய மோடு வேற.
9: நான் புரட்சி தலைவரோடு பயணத்தை மேற்கொண்டவன். புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரோடு, புரட்சி தலைவர் அம்மாவோடும் பயணத்தை மேற்கொண்டேன். இரு தலைவரை பார்த்ததற்கு பிறகு அந்த தலைவர் வழியில் தமிழ்நாட்டை ஆளுகிற சக்தி மட்டுமல்ல எதிர்கால இந்தியாவை ஆளக்கூடிய சக்தியாக விளங்கக்கூடியவர் தான் தமிழக வெற்றி கழகத்துடைய தலைவர் நம்முடைய தளபதி அவர்கள்.
10: இன்றைய சீனம் வருங்கால பீனம் நம்முடைய மாண்பு
11: அதுதான் நம்ம தளபதி. எங்க போனாலும் அங்க ஃபோக்கஸ் இருக்கும், டெல்லிக்கு போனாலும் ஃபோக்கஸ் இருக்கும், நாளைக்கு அந்த டெல்லியே கூட அவர் தான் இருக்கலாம்.
0: Let's just get you breaking news coming in, and it is enforcement director that's conducted raids at the IAS officer Gyanendra Kumar's Bengaluru residence in KPSC recruitment case in Bengaluru. So this is a case that is dating back a while. The officer's role in this case is under scrutiny. The ED has not specified if had any preliminary evidence to search him. Do remember that they had reached his residence on Sunday. They were made to wait for 2 hours outside before they could go inside, and eventually when they went inside there was another hurdle that the house door was locked. They had to get a local key maker to open the door and go inside. Neighbors were summoned as witnesses to that very process, and this is with similar raids that have also been conducted. There were searches that took place at his house in Bareilly as well. So do remember that he served as a controller of examination in the KPSC from February of 2024 to March of this year before being transferred as the director of MSME in June. And the political row over the minister is set to only intensify, with the opposition planning a protest demanding his resignation. The BJP MLAs will march to the Vidhan Sabha in order to mount pressure on the DK Shivkumar government. And this is the demand as far as the centre is concerned. So the demand centres on the Valmiki Development Basic Corporation scam, over which Nagendra has resigned as minister in 2024. The CBI and the ED probes are still ongoing, as Nagendra has been named in the charge sheet. The BJP has alleged that Nagendra has not received a clean chit and has demanded a removal from the cabinet of DK Shivkumar. But then we have the chief minister, who has hit back saying that the opposition can do whatever they want, with the opposition demanding the exit of Nagendra in the Valmiki scam that is once again at the centre of the political clash. And switching tracks now to Punjab, a retired High Court judge has levelled allegations against the wife of a Bhagwant Mann, Gurpreet Kaur, claiming that she attempted to basically, demand a bribe of 5 crore rupees, and this was in order to hush up a rape case. The rape case victim has approached the Punjab and Haryana High Court seeking court intervention over the investigation. The victim has sought a CBI probe, alleging that the state police investigation was not impartial. The allegations center on a claim that there was an attempt to suppress or influence the case. The retired judge has alleged that 5 crore rupees was sought in connection with the case, and the allegations involve the wife of the current chief minister, Gurpreet Kaur, who has you know, outrightly rejected the allegations as baseless and has issued a legal notice to the retired judge over the claims that have been made.
12: ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡੱਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘਬਰਾਈ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਈ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
13: जब झूठ की हद पार हो जाए तो उसका जवाब सिर्फ सियासी नहीं होता, कानूनी भी बनता है। पिछले दिन ही हमने देखा कि कांग्रेस के जो विधायक हैं सुखपाल सिंह खैरा जी, उनके जीजा जी सरदार रणजीत सिंह जी ने एक इल्जाम हमारे मानयोग सीएम सरदार भगवान सिंह मान जी उनके धर्मपत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर मान पे लगाए, जो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। और आज डॉक्टर गुरप्रीत जी के द्वारा उनको लीगल नोटिस, कानूनी नोटिस भेजा गया है कि विद इन 24 आवर्स जा तो वो माफी मांगे, नहीं तो कानून के कटहरे में उनको खड़ा होना पड़ेगा और उसका जवाब देना पड़ेगा।
14: एलिगेशन लगे हैं उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी और पंजाब के डीजी अपनी रिपोर्ट अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मांगी है, आपके माध्यम से पता चला है कि अगर ऐसी कोई बात है तो वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, और दूसरा उसमें क्या तथ्य हैं उनके ऊपर लिखें ह्यूमन राइट्स कमीशन को। दूसरी बात कि सीएम आर को और सीएम रेजिडेंस को और मुख्यमंत्री साहब को इसके ऊपर अपनी स्थिति जो है वो स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए कि बात क्या है, मुद्दा क्या है, क्यों ऐसी बात उठ रही है, क्यों ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये तमाम बात।
0: And with that, we're slipping into a very short break. On the other side, we're going to get you S.J. Shankar's visit to Russia. That and a lot more. Stay with us.
15: Across the country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change. Our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
4: प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
3: न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट एम्बिशंस क्रॉसिंग बॉर्डर्स वॉइसेस रिफ्यूजिंग टू वेट देयर टर्न इंडिया इज चेजिंग गियर्स फास्टर बोल्डर मोर रेस्टलेस इट डजंट स्टॉप Neither do we. NDTV, when it really matters.
4: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी, आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट

0: Celebrate Raksha Bandhan with Samsung Galaxy. Own the Galaxy S series starting at just rupees 73 per day and the Galaxy A series starting at just rupees 50 per day.
1: New feels good.
2: जब तक लाजवाब न बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है। तभी तो रिचमन बनना नहीं आसान है।

0: Pick up its protest and, of course, demanding the resignation of the ministers, the BJP that's decided to lay siege to the Vidhan Sabha. Take us to the details of this almost 90 crore rupees scam in which, you know, we're talking about 90 crore rupees that were siphoned off. Take us to the allegations that were made against the minister.
1: Well, you see, a Valmiki Corporation scam is something that came to light in 2024 in the month of, May, around somewhere where that, you know, there was a major allegation against the B. Nagendra back then, you know, stating that there was almost, huge scam irregularities have really taken place in his particular department. And since then, you've been having the BJP who's basically continuously demanding for his resignation. In fact, remember back then, the BJP has also alleged that the money that was was also sent for the neighboring states elections as well, and also certain portion of the money had gone to the high command as well. That was the allegation that was made by the opposition BJP. But however, you see, the matter is also before the CBI and the ED as well. We did see how that he back then was also arrested by the investigative agencies as well, and then later point was also released. But so far, you see, the important point is that he's not been given a clean chit. Now, that's the reason why the BJP is racking this whole issue since the day one of the monsoon session, stating that when B. Nagendra, the current minister, has not got the clean chit, how come he was inducted under the cabinet of D.K. Shivkumar? That, you know, that's the reason they are trying to mount this whole pressure. This is another round of a massive protest that the BJP has really called for, planning to lay siege to Vidhan Sabha, but unlikely that, you know, the cops would allow them as well to, somewhere pass from this the particular route as well there again. But needs to be seen. All likely they will also get detained at the Freedom Park itself is what we are given to understand that way, but needs to be seen, you know, whether how that the Chief Minister D.K. Shivkumar is really going to counter this part of the opposition inside the assembly now. Back
0: right,
1: to
0: and a protest that is going to be taking place, and with a march to the Vidhan Sabha is going to be the BJP against the Minister Nagendra, demanding the resignation of the minister. Moving on now to get you more news coming about, and this is from Tamil Nadu. The TVK has stepped up its pitch for Vijay, the chief minister, as a potential candidate for the role of the prime minister, with party leaders projecting him for a larger national role. The Tamil Nadu minister Wilson has said that Vijay is headed towards the national political stage, signalling confidence in his growing political profile. The Congress has pushed back against the TVK's Vijay for prime minister pitch, maintaining that Vijay cannot be projected as the country's next prime minister, taking aim at the party's growing national ambition.
2: அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம தலைவர் போயிட்டு இருக்கிறாங்க. நேஷனல் லெவலில் ஒரு லீடர் உருவாகிட்டு இருக்காரு. வேற யாரும் கிடையாது, நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் தான், நம்ம அண்ணன் தான். அது இப்பயே வந்து வெரி கிளியராக ஒரு மேண்டேட். அனதர் 2 இயர்ஸ், 2029 பாருங்க எப்படி கேட்ட மாற்றங்கள் வரப்போகுதுன்னு பாருங்க.
3: அதனால நீங்க ரசிகர் பண்ற போர்டில் இருக்கவங்கள நீங்க மௌனம் மாற்ற முடியாது. தமிழ்நாடு இந்தியாவுக்கே தெரியும் இந்தியாவுடைய சூழ்நிலை எப்படி இருக்குன்னு. அமித்ஷாவும் மோடியும் சேர்ந்து ஒவ்வொரு எதிர்கட்சிகளுடைய அதிகாரங்களையும் பிடுங்குவதிலும், இடியையும் சிபிஐயும் உபயோகப்படுத்தி பயமுறுத்துவதிலும், கட்சிகளை உடைப்பதிலும், ஜனநாயகத்தை இல்லாமாக்குவதிலும், குறிப்பிட்ட விதத்தில் டீலிமிட்டேஷனை எப்படியாவது கொண்டு வந்து அசாம் மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி புது தொகுதிகளை வரைவு செஞ்சு எந்தெந்த பூத்தெல்லாம் பாஜகவுக்கு ஓட்டு போட்டாங்களோ அந்த பூத்தெல்லாம் டாட்டாக கனெக்ட் பண்ணி ஒரு தொகுதியை உருவாக்கி அந்த தொகுதியில் பாஜக எம்பிக்களை உருவாக்குறதுக்காக திட்டமிட்டுக்கிட்டு இருக்கு பாஜக. அந்த ஃபார்முல, அந்த ஃபைட்டில் இருக்க நாங்கள். அவர்களுடைய மோடு வேற, எங்களுடைய மோடு வேற.
4: நான் புரட்சி தலைவரோடு பயணத்தை மேற்கொண்டவன். புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரோடு, புரட்சி தலைவர் அம்மாவோடும் பயணத்தை மேற்கொண்டேன். இரு தலைவரை பார்த்ததற்கு பிறகு அந்த தலைவர் வழியில் தமிழ்நாட்டை ஆளுகிற சக்தி மட்டுமல்ல, எதிர்கால இந்தியாவை ஆளக்கூடிய சக்தியாக விளங்கக்கூடியவர் தான் தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடைய தலைவர் நம்முடைய தளபதி அவர்கள்.
5: அதுதான் நம்ம தளபதி. எங்க போனாலும் அங்க ஃபோக்கஸ் இருக்கும், டெல்லிக்கு போனாலும் ஃபோக்கஸ் இருக்கும், நாளைக்கு அந்த டெல்லியே கூட அவர் தான் இருக்கலாம்.
0: Vijay, my colleague joining us in order to get us details. Vijay, of course, you know, here we have the TVK leaders pitching Vijay for the role of the Prime Minister and begging to dig for, of course, as a Congress party, calling it nothing but a fan club moment.
6: Yeah, that's right, but it is not clear whether it is some kind of co-financy towards TVK Chief and Chief Minister C. Joseph Vijay. But however, officially, TVK High Command has not projected Chief Minister Vijay as a Prime Minister candidate. But however, it was a surprise from TVK senior leader Singhotain himself calling Vijay. Vijay has the capacity to rule the nation. So in a way, many TVK leaders, ministers have started to project Vijay as a Prime Minister candidate ahead of 2029 Parliament election. But it was not well received among Congress supporters. For obvious reason, remember from 2019, Congress has been projecting Rahul Gandhi as the Prime Minister candidate. That's why the Congress Tamil Nadu chief Manikam Thakur has come down heavily against the TVK ministers, calling him they are still on some kind of fan mode. They're not coming out of fan club mode. He also said like Congress only extended support to TVK to form the government, with Congress 5 MLAs support only TVK able to form the government. So TVK ministers know this fact pretty much well. So it would be very interesting to see, despite Manikam Thakur passed such remarks, even yesterday, many leaders have projected Vijay as the future Prime Minister of India. So it would be very interesting to see how Congress going to respond to this. And it would be very interesting to get reaction from the BJP also.
0: Right, Vijay, thank you so much for getting us details of perhaps the rifts that are emerging in that alliance between the TVK and the Congress party. At least for now, they don't seem to be on the same page. Let's just switch tracks now and get you a viral video that's triggered a political row in the state of Tamil Nadu after it wrongly claimed to show Minister Kirtana. The minister has denied being the woman in the video, but has hit back at trolling, calling it a regressive mindset and alleging that political opponents are manufacturing a narrative and calling misogyny the oldest weapon of those who have nothing substantive to positively contribute. Kirtana said a woman's appearance should not be subjected to public trial, questioning why there was political hysteria over this very video or any video, and directly addressing the women in the video. In fact, she's gone ahead and said that you look stunning. That is what she's called that woman in the video, adding that she was dragged into this simply due to a passing resemblance. The DMK has also slammed the trolling, calling it an attempt to degrade women. Let's listen in.
7: பொய் பிரச்சாரம்னா எப்படி எல்லாம் வந்து சாதிக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சு, இப்ப தினமும் சனி ஞாயிறுனா அவங்களோட வேலையே இதுதான். இன்னைக்கு நான் பொய் பிரச்சாரத்தை காமிக்கிறேன், நீங்களே சிரிப்பீங்க. யாரு போட்டிருக்கா தெரியுமா? இது இபிஎஸ் 24/7 ப்ளூ டிக் கூட வந்து போட்டிருக்காங்க. யாரோ ஒரு பொண்ணு இந்த மாதிரி ஒரு அரகரை ட்ரெஸ் போட்டுட்டு கார்ல ஏறாங்க, இந்த வீடியோ எடுத்து போட்டு இது யார் என்று தெரியுறதா? எதுல இபிஎஸ் 24/7 ஒரு அபிஷியல் பேஜ். ஒரு பெண்ணை எப்படியெல்லாம் இழிவுபடுத்த முடியுமோ, திமுகவும் அதிமுகவும் மாறி மாறி இப்ப இன்டர்நெட்ல இப்படிதான் போடுறாங்க.
0: Let's just switch tracks and get you more news coming in at the moment. And it's the debate over one nation, one election that's intensifying, with the government there pitching simultaneous polls. We have Shivraj Singh Chauhan, who has argued that frequent elections hamper development, also saying that political parties remain constantly engaged in electioneering and public money is repeatedly spent on polls. Meanwhile, the JAPC, examining the One Nation, One Election bill, has stepped up its consultations. In fact, the panel is meeting legal experts and other stakeholders as well, including former judges. But the proposal continues to face opposition. We have CPI MP, we have P. Santosh, who has called this impractical, alleging that the BJP is using the debate to divert from other attentions, from other issues that demand attention instead.
8: ये लगातार होने वाला चुनाव देश की प्रगति और विकास में बाधक है. हमारे देश में पाँचों साल 12 महीने 30 दिन 24 घंटे सभी राजनीतिक दल केवल चुनाव की तैयारियों में लगे रहते हैं. इसके कारण जन कल्याण के काम रुक जाते हैं, धन का अपव्यय होता है, जातिवाद भाषावाद जैसी बुराइयों को बल मिलता है, बच्चों की शिक्षा दीक्षा अधूरी रह जाती है, प्रशासन 24 घंटे इसी काम में जुटा रहता है। इन सब समस्याओं का समाधान है एक राष्ट्र एक चुनाव। आज संतों ने संकल्प लिया है हरिद्वार की इस पवित्र भूमि पर। मुझे विश्वास है कि संत जब संकल्प लेते हैं तो निश्चित तौर पर वो संकल्प पूरा होता है।
9: सभी संतों ने इस पवित्र श्रावण मास में आदरणीय केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि पूरे देश के अंदर ये जो अभियान है, इस अभियान को लोगों के बीच में ले जाने का काम उनके माध्यम से हो रहा है, तो यहाँ संतों ने सबने आशीर्वाद भी दिया है और संकल्प भी लिया है कि इसको जो है जल्दी से जल्दी देश की संसद पास करे।
0: Let's just now get you more news coming in. At the moment, a retired High Court judge has leveled allegations, and this is against the wife of the Chief Minister of Punjab. Yes, we're talking about Bhagan Maan's wife, Gurpreet Kaur, who claiming an attempt was made to scuttle a rape case involving a bribery demand that was being made to the tune of 5 crore rupees. The rape case victim has approached the Punjab and Haryana High Court seeking court intervention over the investigation. The victim sought a CBI probe alleging that the state police investigation was not impartial. The allegations center on a claim that there was an attempt to suppress or influence that very rape case. The retired judge has alleged that there was a bribery amount that was being sought, and that is the allegation that is being made against the wife of the Chief Minister of Punjab. She, on her part, has rejected the allegations, calling them baseless, and has issued a legal notice to the retired judge over the claims that have been made.
10: ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੱਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘਬਰਾਈ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਈ ਜਾਂ ਲੀਗਲ
11: ਕਾਰਵਾਈ
10: ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
12: जब झूठ की हद पार हो जाए तो उसका जवाब सिर्फ सियासी नहीं होता, कानूनी भी बनता है। पिछले दिन ही हमने देखा कि कांग्रेस के जो विधायक हैं सुखपाल सिंह खैरा जी, उनके जीजा जी सरदार रणजीत सिंह जी ने एक इल्जाम हमारे माननीय सीएम सरदार भगवान सिंह मान जी उनके धर्मपत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर मान पे लगाए, जो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। और आज डॉक्टर गुरप्रीत जी के द्वारा उनको लीगल नोटिस, कानूनी नोटिस भेजा गया है कि विद इन 24 आवर्स या तो वो माफी मांगे, नहीं तो कानून के कटहरे में उनको खड़ा होना पड़ेगा और उसका जवाब देना पड़ेगा।
13: एलिगेशन लगे हैं उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी और पंजाब के डीजी, अपनी रिपोर्ट अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मांगी है, आपके माध्यम से पता चला है कि अगर ऐसी कोई बात है तो वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, और दूसरा उसमें क्या तथ्य हैं उनके ऊपर लिखें ह्यूमन राइट्स कमीशन को। दूसरी बात कि सीएम आर को और सीएम रेजिडेंस को और मुख्यमंत्री साहब को इसके ऊपर अपनी स्थिति जो है वो स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए कि बात क्या है, मुद्दा क्या है, क्यों ऐसी बात उठ रही है, क्यों ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये तमाम।
0: Switching tracks now to, in fact, a fresh twist that has emerged in the this is the family death case that has taken place. Do remember three members of a family that jumped off this cliff. The boy who was trying to take his own life, and the father who was trying to stop him from doing so. The mother who was pleading and begging the son not to take that drastic step. But seeing that the father and the son had fallen to their death is when she decided to jump off that cliff as well. Now, we have new details that have come about that are raising questions over whether the tragedy really took place because of an iPhone. Do remember that, initial reports suggested that he couldn't pay the EMI of a new iPhone that he had recently bought, is why he decided to take his own life. Now, there seems to be a deeper family feud that may have really been behind this all. The 18-year-old Kunal, who had also allegedly attempted suicide not once but exactly on that same very hill last year, but had managed to be he was rescued by the police at the time. They had convinced him to get off that hill. Now, meanwhile, an old video of the mother has gone completely viral, in which she is seen emotionally accusing someone of denying her family their rightful dues. Reports are suggesting that the father often stayed away from the house and had been out of town for the last 3 months. Another key angle under scrutiny is a possible property-related family rift. Sources are suggesting that the relationship between him and his parents wasn't too good, and following his elder brother's death, that might have contributed to his decision to take his life. He had attempted to do the same last year as well, and the police were then successful in persuading the teen to drop the idea of ending his life. However, this time around, they failed.
11: माझा आणि माझ्या मुलाचा हक्क खाल्लास, प्रॉपर्टीसाठी भावाचं आणि आई वडिलांचं कधी जमू दिलं नाही. माझा हस्त खेळता संसार तू उद्ध्वस्त केलास. माझ्या संसाराचे तू विष कालवलं. माझ्या मुलाला त्याच्या वडिलांपासून दूर केलं. हे जे पाप आहे ना, येणाऱ्या 7 पिढ्या तुझ्या फेडतील. हा शब्द आहे माझा.
0: Break news coming in of an orthopedic doctor in Maharashtra's Thane who's faced verbal as well as physical abuse at the hands of a patient's son. The accused's father visited the OPD at the hospital for a medical checkup. Even as the doctor addressed the patient's queries, the accused began using disrespectful and aggressive language. He allegedly hurled abuses and attacked the doctor inside the OPD. The Kalyan police have registered a case against the accused, Vineet Jayant, who has now been accused of verbal abuse against a doctor inside the OPD inside this hospital in Kalyan.
14: कल रात को 11:15 बजे मैं पेशेंट को चेक कर रहा था. पेशेंट का नाम है जयवंत देशमुख. उसको पसली में चोट आई थी, फ्रैक्चर आया था. वो फॉलोअप के लिए आया था. पेशेंट ठीक था. पेशेंट को सब एक्सप्लेन किया क्या क्या, कैसे पट्टी करना है, कैसे दवा लेना है, कैसे कैसे उसको पट्टी रखना है. बट उसका लड़का वही चीज़ मेरे को 10-10 बार पूछ रहा था. मैंने उसको सब एक्सप्लेन किया. तू तड़क में बात कर रहा था, मैं तू भी उसको एक्सप्लेन किया, लेकिन वही चीज़ बार बार पूछ रहा है. मैंने बोला कि वही चीज़ बार बार क्यों पूछ रहे हो और मेरे को तू करके क्यों बोल रहे हो. तो बोल रहा है कि मैं तू क्या बड़ा डॉक्टर हो गया क्या, ऐसा करके मेरे को बोला. और फिर जैसा वो बाहर गया और मेरे को गाली देने लगा. फिर मैं बोला मेरे को गाली क्यों दे रहे. फिर आके मेरे को मारने लगा.
15: आगे क्या किया आपने?
14: आगे मैंने 112 को कॉल किया. पुलिस आए, मैं उनके साथ गया उधर एफआईआर के लिए, इसके लिए फाइल करने के लिए. मेरे साथ कैंपस वर्क के सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट आए, उन लोगों ने हेल्प किया और एफआईआर नोंद की.
0: Case has been registered against Vineet Jayant Deshmukh because he assaulted this doctor inside the OPD in Kalyan. We are going to keep tracking that story. For now, slipping into a short break.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो सुबह केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली?
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: हाउ?
2: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
3: इट्स द माही वे।
4: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
5: देश का टायर जेके टायर।
6: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
7: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
8: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
9: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
10: अरे मेरे राजा।

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी।

0: रंग रंग रंग रंग रंगीने रंग रंगीने रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे।
1: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है
2: कुछ इससे भी अनोखा।
1: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद पान मसाला।
3: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
4: रियली
3: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
4: How?
3: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cash back of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
4: It's the Mahi way.

0: देश का टायर जेके टायर।
1: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है?
5: अरे मेरे राजा।

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
2: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
3: Meetha या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
4: जब तक लाजवाब न बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमन बनना नहीं आसान है।
5: We are turning a page in Nepal's political economy on the bedrock of good governance and bold reforms. We want to accelerate the pace of economic catch-up.
6: In rapidly changing global landscape, foreign policy must be anchored in strategic clarity and shared prosperity.
7: Hello, I'm Shashi Tharoor, and beyond statecraft and former treaties lies the true heart of...
8: Rang bana rahe, Bojo Paints, rang bana rahe.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
8: अरे मेरे राजा।

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली?
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: How?
2: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
3: It's the Mahi way.
4: Hindustan mile, Hindustan se.
5: Desh ka tire, JK tire.
6: Jante hain, main Elite Matrimony kyun recommend karta hun? 17 years of experience, largest database of elite profiles, or 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।

0: They found suspects living in Guduvancheri, outskirts of Chennai. They informed local police, and immediately local police confirmed the two suspects' whereabouts in Guduvancheri residence, and they made a search inside the residence in Guduvancheri. They found a shocking details where they found a few body parts in a vessel type structure. Immediately police recovered those body parts and also informed the Agra police, and immediately they found the details. They found who passed away, and also based on a deceased son complaint, missing complaint, they registered a missing complaint, and also now more investigation is going on to find the two suspects who were absconding now, and more investigation is going on. NDTV spoke to police official who is investigating the case, so he told us saying that so far based on a scientific evidence we are trying to confirm the body parts in Agra railway station and also in Guduvancheri, whether those two body parts are same or belong to same person only, and the reason for murder also is being investigated. So we'll get a clear info. They formed a special team also to investigate, to inquire the incident. So we'll get a clear information once the police conclude the investigation, Gargi.
1: That's right. Thanks so much, Vijay Gopal, for joining us with all those details. So the case of this red suitcase in which remains of a woman were found. Well, news now from Uttar Pradesh, where a political controversy has now broken out. A fish feast at a Congress event in Ayodhya has triggered a political row, with the event taking place during the month of Sawan. The event was organized by Congress leader Ram Nihal Nishad, held to welcome Congress State President Ajay Rai. The BJP has hit out at the Congress, calling the serving of fish during Sawan an insult to Sanatan Dharma and Sanatanis. Meanwhile, Congress justified the eating of fish and said, what is wrong in eating fish? And fish is part of the Nishad community tradition.
2: भोजन पर भी आप पूछोगे, आप डोंट मेरे उस वक्त बंद करो. अगर भोजन पे आप कमेंट करना चाहते हो तो मैंने भारत वर्ष में 1926-1950 को जब से संविधान लागू हुआ है, कोई कुछ भी खा सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, कहीं पूजा कर सकता है, सभी लोग स्वतंत्र हैं. इस पर कमेंट करने का अभी आप पत्रकारिता जा करके सीख लीजिएगा, उसके बाद हमारे पास आइएगा. भारतीय संविधान को आप लोग तीनों लोग पढ़ लीजिए, कहिए तो मैं भारतीय संविधान की प्रति दिखा दूंगा. ये निषाद समाज का मौलिक अधिकार है. अगर आप बोलना चाहते हो मछली मारना, मछली खाना, इसमें बुराई क्या है भाई?
3: चर्चा में बने रहने के लिए वो बहुत से लोग सावन में अपना मछली भोज कर रहे हैं. कांग्रेस के लोग हैं भाई, अब वो धर्म को नहीं मानते हैं, धर्म के नाम पर ढोंग रचते हैं.
4: अजय राय आज का लगातार अयोध्या आना जाना कर रहे हैं, और आज उन्होंने अयोध्या आया और इस पावन पवित्र श्रावण मास के उपलक्ष्य में हनुमान जी का दर्शन भी किया, और उसके बाद उन्होंने जो पाप करने का काम किया है वो अपने आप में अत्यंत निंदनीय है, दुखद है. इस पावन पवित्र अवसर पर जिस तरह से उनके स्वागत में मछली भोज का आयोजन किया जा रहा अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है. वही मार्ग कांवर यात्रियों की मार्ग है जिस तरह से इन्होंने सनातन संस्कृति के ऊपर, इस पावनता के ऊपर कुठाराघात करने का जो चेष्टा किया है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है.
5: शर्म आती है कांग्रेस पार्टी में जो भी लोग हैं और जो भी नेता है वो सनातन के कितने बड़े द्रोही है ये सामने आ जाता है. मुंह में राम बगल में छुरी, आप सोचे थे धीरज खा लेंगे, कोई जानेगा नहीं. ये पत्रकार समाज और सनातन रक्षक संघ सब पर पैनी निगाह रखे हुए है. आप खाओगे तो हम पोल खोलेंगे, क्योंकि 27 में आपकी दाल नहीं गलनी है, पूरा विपक्ष धराशाही होगा.
6: कांग्रेस हैज गॉट hatred towards Sanatan, that is for sure. Now during the sacred month of Sawan in Ayodhya, the holy city of Bhagwan Shri Ram, a Congress event attended by its Uttar Pradesh President Ajay Rai, and fish is served there. So on one hand, Congress leaders visit temples, recite Hanuman Chalisa and seek the blessings of Ram Lala, and on the other hand, such complete insensitivity is displayed at their own political program. So whom they want to please? Congress may argue that the constitution does not prohibit eating fish during Sawan. Absolutely correct. Of course it doesn't. But everything in a civilized society is not determined by what is legally prohibited. some things are

0: determined by respect, tradition and sensitivity towards the faith of millions. And we have seen that time and again, Congress has insulted and has always tried to abuse and crush Sanatan. One more example is added.
1: All right, news now from Punjab, where a retired High Court judge has leveled a serious allegations against Punjab Chief Minister Bhagwant Mann's wife, Gurpreet Kaur, claiming an attempt was made to scuttle a rape case involving a 5 crore demand. The rape case victim approached the Punjab and Haryana High Court seeking a court intervention over the investigation. The victim sought a CBI probe, alleging that the state police investigation was not impartial. The allegation centered on a claim that there was an attempt to suppress or influence the rape case. The retired judge has alleged that 5 crore was sought in connection with the case, with allegations involving Chief Minister Bhagwant Mann's wife. Gurpreet Kaur has rejected these allegations as baseless and has issued a legal notice to the retired judge over these claims.
2: ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘਬਰਾਈ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਈ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
3: जब झूठ की हद पार हो जाए तो उसका जवाब सिर्फ सियासी नहीं होता, कानूनी भी बनता है। पिछले दिन ही हमने देखा कि कांग्रेस के जो विधायक हैं सुखपाल सिंह खैरा जी, उनके जीजा जी सरदार रणजीत सिंह जी ने एक इल्जाम हमारे मानयोग सीएम सरदार भगवान सिंह मान जी, उनके धर्मपत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर मान पे लगाए, जो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। और आज डॉक्टर गुरप्रीत जी के द्वारा उनको लीगल नोटिस, कानूनी नोटिस भेजा गया है कि विद इन 24 आवर्स जा तो वो माफी मांगे, नहीं तो कानून के कटहरे में उनको खड़ा होना पड़ेगा और उसका जवाब देना पड़ेगा।
4: एलिगेशन लगे हैं उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी और पंजाब के डीजी, अपनी रिपोर्ट अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मांगी है, आपके माध्यम से पता चला है कि अगर ऐसी कोई बात है तो वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, और दूसरा उसमें क्या तथ्य हैं उनके ऊपर लिखें ह्यूमन राइट्स कमीशन को। दूसरी बात कि सीएम आर को और सीएम रेजिडेंस को और मुख्यमंत्री साहब को इसके ऊपर अपनी स्थिति जो है वो स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए कि बात क्या है, मुद्दा क्या है, क्यों ऐसी बात उठ रही है, क्यों ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ये तमाम
5: पार्टी अपने आप को कट्टर ईमानदार कहती थी, कट्टर बेईमान साबित हुए हैं, और अब तो सीएम हाउस वो भी जो है लोगों के निशाने पे आ गया है, और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन उन्होंने नोटिस दिया है मिसेस भगवंत मान को, अपना स्पष्टीकरण दें, क्योंकि फॉर्मर जस्टिस उन्होंने ये मामला सारा उठाया है, और कि भी 5 करोड़ रुपए जो है लेने की बात हुई है एक रेप केस को दबाने के लिए, और कितनी विडंबना है कि एक महिला ही महिलाओं के खिलाफ है।
1: In other news now, the debate over one nation, one election intensifying again, with the government pitching simultaneous polls. Union Minister Shivraj Singh Chauhan has argued that frequent elections hamper development, saying political parties remain constantly engaged in electioneering and public money is repeatedly spent on elections. Meanwhile, the Joint Parliamentary Committee examining the Onoh Bill has stepped up consultations. The panel is meeting legal experts and other stakeholders, including former judges. But the proposal continues to face opposition. CPI MP Peer Sandosh has called Onoh impractical, alleging that the BJP is using the debate to divert attention from other issues.
6: ये लगातार होने वाला चुनाव देश की प्रगति और विकास में बाधक है। हमारे देश में 5 साल 12 महीने 300 दिन 24 घंटे

0: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात.
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
1: अरे मेरे राजा.

0: गया है और इसमें 40 लोग जो है अस्पताल में अभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसके अलावा 12 लोग ऑलरेडी डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी सिचुएशन बहुत सारी कंट्रोल में है, पैनिक होने की कोई जरूरी नहीं है और पुलिस का आह्वान है कि अफवाह उनके ऊपर भरोसा मत करो।
1: 40 लोग एडमिट किए गए थे जिसमें अब तक के 12-13 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 3 लोग अभी भी आईसीयू में, और पुलिस प्रशासन तो हमारी मदद रात में 12:30 बजे से कर रही है, बट उसके साथ साथ यहाँ पे सबसे बड़ा योगदान रहा है जो यहाँ पे SDRPF जो यहाँ पे काम कर रही है, तो ये भी रात से यहाँ के सिटीजन्स के लिए काम कर रही है, साथ ही जो OCW है और यहाँ पे फायर NMC जो NMC का डिपार्टमेंट है, फायर डिपार्टमेंट, वो भी कर रहा है।
2: Rahul Gandhi's call to smash the patriarchy has triggered a political war of words between the Congress and the BJP. Speaking at his Chhatro Ki Goonj event on the 22nd of August, Rahul Gandhi said that patriarchy suppresses and controls women. He further called for an end to the system and he urged women to be loud, proud and fight for their space in society, not to be anybody's, you know, be introduced as just somebody's daughter or wife. The BJP now has hit back, questioning the Congress party's approach towards women's political representation. The BJP challenged Rahul to support 33% women's reservation law and questioned how the Karnataka government has no women in its cabinet. Congress countered the BJP by alleging that the RSS had opposed the constitution and advocated for the Manusmriti.
3: Congress party ke ek ahem neta ne महिलाओं और महिलाओं के नेतृत्व के समर्थन की बात की है, मैं उनसे कहना चाहती हूं विनम्रता पूर्वक, कृपया प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम को कि देश की महिलाओं को संसद में नेतृत्व करने के लिए 33% आरक्षण का बिल त्वरित रूप से लागू हो, इस प्रयास में प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें।
4: राहुल गांधी should first trash the hypocrisy before he waxes eloquent slogans like smash the patriarchy, because the track record of the Congress party is really dismal when it comes to woman empowerment. There are zero women ministers in both Karnataka and Himachal Congress-led governments.
5: Women have been very much liberated, and India as a country, immediately after independence, after inducting our constitution, we were one of the pioneers in giving universal suffrage, one person, one vote, where women were also given vote, where women were also equally treated when it comes to voting. Now we are in a stage where we have to take women to the next stage, where women are very much well equipped in terms of education and skills. And that is why Rahul ji has clearly boosted motivated women to get out of the clutches of men and be more independent.
2: With Gen Z emerging as an important political constituency, parties are now stepping up efforts to engage with young voters amid growing youth-led political activism and protests. BJP President Nitin Naveen's new team, in fact, discussed plans for a dedicated Gen Z outreach program. The outreach will include direct interaction with Gen Z, including engagement with students. But opposition party members have attacked the BJP's Gen Z outreach, claiming young voters have lost faith in the party. The Congress claim that Gen Z is seeking change and will not support the Modi government in the 2029 polls. The BJP said Gen Z will be central to its vision of a developed India. The party said it wants to empower young Indians and give them a greater role.
6: Committees to bahut banayi hai. Ek baat aapke madhyam se kahun, Pradhanmantri ji ne shuru mein ek sansad adarsh gram yojana shuru ki thi. Aaj wo yojana kahan hai? कमेटी बना देना बहुत बढ़िया, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कहावत है, कमेटी बना देना ये अपने आप में द्योतक है कि आप उसको टाल रहे हैं। युवाओं के मैसेज को समझिए, उनको एजुकेशन का आर्किटेक्चर बेहतर चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए ठोस ब्लूप्रिंट और एश्योरेंस चाहिए, और ये दोनों आपकी कमेटी के प्रभाव क्षेत्र में नहीं है, प्राधिकार में नहीं।
7: मेरी समझ से जैन जी ही नहीं, जैन उल्फा की भी बस जो है सत्ता मिस कर चुकी है। इन नौजवानों को स्पष्ट दिखाई दे रहा है, उनके बड़े सवाल हैं, रोजगार का सवाल है और शिक्षा में सुधार का सवाल है, और जन उल्फा अब जगह जगह इसीलिए इन उन सवालों को

0: उठा रही है अपने स्कूलों के, अपने पाठ्यक्रमों के, शिक्षकों की कमी के, तो ये है। और हमने भी कांग्रेस पार्टी के तौर पर तय किया है कि हम अपने यहाँ भी कुछ जो सवाल उठे हैं उन सवालों का अपनी सरकारों से भी समाधान करेंगे और आगे पार्टी के रूप में भी कुछ हम वो बनाएंगे आगे का रोड मैप जो है।
1: आगे चल करके हम सब जैन जी को 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य के साथ जोड़ना हमारी पार्टी का लक्ष्य है कि जैन जी जिसको नेतृत्व संभालना है वो सक्षम बने और वो उस नेतृत्व के लिए तैयार हो। 2047 के विकसित भारत के संकल्प में सेवा से संकल्प, इसको साथ में लेते हुए जैन जी देश के निर्माण कार्य में लगे, देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करे, इसी को लेकर के रणनीति तैयार।
2: वो अपने पार्टी की ओर से कुछ भी कर सकता है, इसे कोई फर्क नहीं होगा। जैन जी के कोई विश्वास नहीं है इस पर बीजेपी के ऊपर।
3: नहीं नहीं, वो जो गैप हो गया है वो गैप पूरा रहेंगे, क्योंकि जैन जी जिस तरह उसका विजन है, वो जो देश को देखना चाहते हैं, सोसाइटी को देखना चाहते हैं, जिस तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके साथ रोटी कपड़ा मकान एडुकेशन जॉब इसका संपर्क है। ये भाजपा जिस तरह देश चला रहा है उसके साथ जैन जी का ये जो विजन है उसका कोई संपर्क नहीं है। जैन जी रूठे हुए हैं।
4: They have understood that the youth are against them. The CJP agitation and various youth agitations have made them understand that people, youth are against them. Because of they think that they can collect youth. But the youth raise certain important issues like anti-NEET exam, NET exam. All those things will go against this government. They have understood that next time they cannot win. That is why they want to somehow appease the youth. So they are doing all those things.
5: Now, speaking of the youth and Gen Z, the war of words between yoga guru Ramdev, actor turned BJP MP Kangana Ranaut shows no sign of abating. Remember, it all started with her comments on Gen Z. Baba Ramdev has now responded on this public spat with the BJP MP, saying that he does not wish to comment on her any further. The yoga guru said that people who know Swami Ramdev is and what his contribution has been. Now, this comes after a sharp exchange between the two. Ramdev had earlier questioned Kangana's generation gutter remarks, describing it as a sign of a disturbed mind. Remember, she had made that gutter generation remark against the Gen Z. Ramdev asked, what about her past deeds? What were they like? And questioning, what was her youth like? Now, Kangana Ranaut hit back on the 19th of August, asking Ramdev not to daydream about her bedroom and certainly not to give her character lessons. She also claimed her character was better than his and said that there were no fraud reports against her, and took a dig at him over the Supreme Court proceedings involving Ramdev. Ramdev's latest remarks now come as the war of words between the two seems to be continuing.
6: Jin logo का अभी क्या बोलूं मैं, विवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहता। स्वामी रामदेव क्या है ये देश जानता है, स्वामी रामदेव का योगदान क्या है ये देश जानता है, इसलिए मैं ओछे लोगों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा।
5: And hopefully that will be the last of this war of words. With that, we'll slip into a short break. News and updates continue on the other side. Stay with us.

0: See, right now, so far as these threat letters are concerned, the security agencies are trying to investigate and they are trying to find out who are the people behind this. What actually right now we know is that once again the shadow of fear continues to haunt Kashmiri Pandit employees who are working there, because this letter, this new hit list has been put online and it has been uploaded there, which has led to the fear psychosis among the Kashmiri Hindus, because this is the second letter during the last 1 month. Earlier also the similar kind of a letter was posted on social media, and that time also the government was prompted to ask them to work from home, and they had also briefed up their securities at the camps where they had been putting up. So this time again the target is the Kashmiri Pandit employees, those who have been employed under the Prime Minister's package. They're calling them traitor. They are saying that they are the one who are working at the behest of the government of India, and they are trying to carry forward the agenda of RSS. Now, because of this reason, that what has happened, that Congress is trying to hit out at the government. They are saying that we thought that now the rehabilitation of the Kashmiri Pandits will start taking place because the government has been claiming that there is a normalcy. But instead of rehabilitation, the people who are putting up there and working, they are being constantly being threatened by the terror organization. And this terror organization is believed to be the proxy of Lashkar Toyba, because Lashkar Toyba do not want to see the footprints of Hindu. What the Kashmiri Pandits are feeling, that the one thing is that if you look at this particular hit list, this time they have got the, specifically they have mentioned the addresses of the Kashmiri Pandits putting up even in the Jammu region. They have got their Jammu addresses, they have even got their card numbers, they have got their telephone numbers. So somewhere the Kashmiri Pandit employee feel that there is someone who is leaking out their information to the terrorists, and they have to further investigate this matter and try to find out who the culprit are. Then there are some Kashmiri Pandit organization, they feel that once again there is a complete silence from the civil society, and also there is a silence from the Kashmir centric leadership. The similar thing, it happened in the 90s when 5 lakh Kashmiri Hindus were forced to abandon their hearts and home because of terror related activity and targeted killing. So this is nothing new. Hardly anything seems to have changed. What really happened to be in 90 is happening again. So they're asking the question that government should do something in this regard so that they can live peacefully.
1: Pradeep Dutta, thank you for joining me live on that story that we just broken here on Breaking Ground. Moving on now, a story from Maharashtra, disturbing one. A massive fire broke out at the NICU facility of the District Women Hospital in Maharashtra's Amravati, killing 3 infants. The fire reportedly broke out at 3:30 in the morning on the third floor after a ventilator explosion. At the time, 39 infants were present in the ward. Doctors, nurses and hospital staff quickly disconnected equipment and evacuated the remaining babies from the flames. 6 critical infants were shifted to a nearby super speciality hospital, while Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has ordered a probe into the deaths. Meanwhile, a political blame game has erupted over the incident. NCP SP leader Supriya Sule has called it a glaring example of systemic negligence, demanding a thorough probe and the strictest action. Congress has questioned the ventilator's safety, citing a similar incident 2 years back and raising questions over possible equipment or electrical faults.
2: अगर आग लगती भी है तो उसकी जो व्यवस्था रहती है, स्प्रिंगलर चालू होना चाहिए था इमीडिएट, और ऊपर से वेंटिलेटर ब्लास्ट होता है जब, तो ये क्यों कैसे हुआ? अभी तो ये टेक्निकली जब इंक्वायरी होंगी तो उसमें पता लगेगा, और कोई दोषी आया, दोषी मिला तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, इतना पक्का है। क्योंकि एक माँ के नाते मैं ये बोल सकती हूँ कि 9 महीने गर्भ में रखने के बाद अगर बच्चे के साथ में ऐसी दुर्घटना होती है तो उस माँ को और उस परिवार को पता है कि उसका क्या दुख क्या होता है करके।
3: कल अमरावती में 3 छोटे बच्चों की वहां पे जल के मृत्यु हुई है। बहुत ही दर्दनाक ऐसी घटना है। कुछ साल पहले भंडारा में इसी प्रकार की घटना घटी थी 2021 में, उसमें 10 बालक मृत्यु के वहां पे गिर गए थे। कहने का मतलब है कि राज्य शासन कमेटी के गठन करती है, जो तज्ञ लोग है उसका उसके बारे में अभ्यास करते हैं, अपना अहवाल देते हैं, और अहवाल देने के बाद में उसके अहवाल के ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं करती। मतलब अहवाल ऐसी पड़ा है तो तज्ञ कमेटी बैठाने का मतलब क्या? फिर
4: फायर ऑडिट के लिए जिस तरह से भंडारा में और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जिस तरह से घटनाएं हुई थी, उसके बाद सरकार ने बहुत कठोर ऐसा निर्णय लिया है। बॉम्बे नर्सिंग एक्ट के माध्यम से जिस तरह से हम परमिशन देते हैं, तो सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, फायर ऑडिट कंपलसरी होना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग परमिशन देते हैं। तो अगर फायर ऑडिट होता है तो ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर इसमें कुछ जिस तरह से जो घटना हुई उसकी एक्चुअली रीजन क्या है, ये भी हमें टेक्निकल विंग के माध्यम से अगर जांच करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि इसमें किसी का दोष है जिस तरह से यूटिलाइज किया हुआ मटेरियल या जो परमिशन है वो परमिशन के बारे में भी कुछ योग्य अयोग्य काम हुआ है उसके बारे में भी हमें पता चलेगा, और उसके बाद हम लोग ये सभी जिस तरह से घटना हुई है उसमें अगर किसी का दोष है तो उस पर भी हम कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे।
2: यहाँ पे आग बुझाने वाली जो यंत्रणा रहती है वो यहाँ पे सुसज्ज नहीं थी, इसलिए ये आग बढ़ी। और एक इन्वर्टर फटता है तो फिर कहीं ना कहीं तो कमी रही है, और जो इन्वर्टर का सप्लायर है या इलेक्ट्रिक के कनेक्शंस है इसमें क्या फॉल्ट फाइंडिंग्स है, ये क्यों नहीं देखा गया? नए बिल्डिंग में नया आईसीयू है, ये इस इंफ्रा में यदि गरीबों के बच्चे मर रहे होंगे तो जिम्मेदारी तो सरकार की ही है ना। ये बच्चे जो गुजर गए उनको कंपेंसेशन बड़े पैमाने पे देना चाहिए, जो सप्लायर्स होंगे या जो दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
1: So let's take you through the big questions of this hour. Who failed to protect the newborns? Who in the system has let them down? Who should be held accountable for the NICU, the NICU fire? Was the NICU safety system a failure? Did the hospital ignore critical safety risks? Were fire safety norms followed? Are the big questions, including has there been a regular inspection of these systems, of these devices, these machines in the NICU? Moving on now to another controversy. A fish feast at a Congress event in Ayodhya has triggered a political row, with the event taking place during the month of Sawan. The event was organized by Congress leader Ram Nihal Nishad, held to welcome Congress State President Ajay Rai. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has hit out at the Congress over the fish feast and said, and I'm going to quote him here, who asked them to visit Hanuman Gari? If they wanted to eat fish, they could have simply gone outside Ayodhya to do so. Congress UP Chief Ajay Rai has denied allegations of eating fish and said that, and I'm going to quote him here now, if the Chief Minister can produce any image of him eating fish, he will resign immediately. Meanwhile, Congress has justified the eating of fish and said, what is wrong in eating fish? And fish is part of the Nishad community tradition.
5: Congress ke log keval virasat ka apmaan hi nahi karte. Kal Congress ke pradesh adhyaksh ka apne aachran dekha hoga. Hanuman Gadi mein darshan karne le jate hain aur bahar jaakar ke machli ka daawat udhate hain. Ye Ram Ram chillate hain. Beshrami ki bhi ek seema hoti hai. किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में यह है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने, तो वो भी शर्मा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में हमारी कौन सी ऐसी प्रजाति हो गई है कि जो वहां मंदिर में राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंग बली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं।
6: आप ये सवाल उठाइए कि क्यों उठाया जाता है ये मुद्दे, ताकि पेपर लीक पे बात नहीं हो, चंदा चोरी। अयोध्या के लिए अगर आज आप अयोध्या का नाम लो तो लोगों के जहन में क्या आएगा? चंदा चोरी। वो हट सकता है क्या ये माछ भात से? बताइए। निषाद जी जो बीजेपी से कांग्रेस में आए, अब उनके संस्कृति में है, उनके खान पान की उसमें है, पद्धति में कि माछ भात खाते हैं। नागपुर वालों को लगता है कि नहीं खाना चाहिए। अब किसी के घर आप जाओगे, वो स्वागत में आपके लिए कुछ रखेगा तो आप उस पर आपत्ति जताओगे, आप मत खाइए। हमारे अजय राय जी तो वैसे भी वेजिटेरियन है, तो छोड़िए उनकी बात, छोड़िए नहीं भी होते वेजिटेरियन तो क्या उसमें गलत। हमें नहीं समझ में आता कि इतने बचकाने और मूर्ख विवाद क्यों लाए जाते हैं? क्या इस देश को ये लोग वाकई मूर्ख समझते हैं?
7: भोजन पर भी आप पूछोगे, आप डोंट, मेरे उसको कवर मत करो। अगर भोजन पे आप कमेंट करना चाहते हो तो मैंने, नहीं नहीं नहीं, भारतवर्ष में 1926 जनवरी 1950 को जब से संविधान लागू हुआ है, कोई कुछ भी खा सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, कहीं पूजा कर सकता है, सभी लोग स्वतंत्र हैं। इस पर कमेंट करने का अभी आप पत्रकारिता जा करके सीख लीजिएगा, उसके बाद हमारे पास आइएगा। भारतीय संविधान को आप लोग तीनों लोग पढ़ लीजिए, कहिए तो मैं भारतीय संविधान की प्रत दिखा दूंगा। यह निषाद समाज का मौलिक अधिकार है, अगर आप बोलना चाहते हो। मछली मारना, मछली खाना, इसमें बुराई क्या है भाई?
8: बहुत ही दुखद है। अयोध्या धाम हमारा जब पवित्र धाम है, प्रभु रामलला का धाम है, और वहां पर इस प्रकार का भोज करना, वो भी सावन के महीने में, ये कांग्रेस की संस्कृति को दर्शाता है।
9: कांग्रेस पार्टी के नेताओं को खुद ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी धार्मिक नगरी में हो सके तो नॉन वेजिटेरियन फूड से वेलकम ना करें, उसके और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मेरे ख्याल से ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं का हिंदू धर्म के लोगों को चिढ़ाने जैसी कार्रवाई है जो उचित नहीं।
10: चर्चा में बने रहने के लिए वो बहुत से लोग सावन में अपना मछली भोज कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग हैं भाई, अब वो धर्म को नहीं मानते हैं, धर्म के नाम पर घूम रचते हैं।
1: We're sipping a short break. On the other side, we return with some very important news. We're all seeing this surge and spike in H1N1 cases, not only in the national capital, in Kolkata, in Bengaluru as well. What do you need to know about H1N1? Dr. Romil Tikoo, Senior Director, Internal Medicine, Max, will be joining us live. Stay tuned.

0: मनुस्मृति।
1: मैं भी पिछले दिनों इस रायबरेली के सांसद श्री राहुल गांधी जी के एक बयान को पढ़ रहा था। उनका बयान, ये महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने बयान दिया कि महिलाएं मनुस्मृति के बंधन को तोड़ करके अब बाहर आ जाएं। राहुल जी एक राहुल गांधी के रूप में आपसे देश बहुत अपेक्षा नहीं करता है, कोई अपेक्षा नहीं करता है, लेकिन भारत की संसद में, भारत की सर्वोच्च पंचायत में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपको देश के लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही बनाता है। आपने भारत के संविधान की शपथ ली थी और संविधान की शपथ लेकर के आप भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं।
2: कांग्रेस पार्टी के एक अहम नेता ने महिलाओं और महिलाओं के नेतृत्व के समर्थन की बात की है। मैं उनसे कहना चाहती हूँ विनम्रता पूर्वक, कृपया प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम को कि देश की महिलाओं को संसद में नेतृत्व करने के लिए 33% आरक्षण का बिल त्वरित रूप से लागू हो, इस प्रयास में प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें।
3: राहुल गांधी शुड फर्स्ट ट्रैश द हिपोक्रेसी बिफोर ही वैक्सेस एलोक्वेंट स्लोगन्स लाइक स्मैश द पेट्रियार्की, बिकॉज द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द कांग्रेस पार्टी इज रियली डिसमिल व्हेन इट कम्स टू वुमन एम्पावरमेंट। देर आर जीरो वुमन मिनिस्टर्स इन बोथ कर्नाटका एंड हिमाचल कांग्रेस लेड गवर्नमेंट्स।
4: Women have been very much liberated, and India as a country, immediately after independence, after inducting our constitution, we were one of the pioneers in giving universal suffrage, one person, one vote, where women were also given vote, where women were also equally treated when it comes to voting. Now we are in a stage where we have to take women to the next stage, where women are very much well equipped in terms of education and skills. And that is why Rahul ji has clearly boosted motivated women to get out of the clutches of men and be more independent.
0: And here's the comment that sparked this controversy, the comment by Rahul Gandhi during his Pune student outreach.
5: Manusmriti says, in childhood, a female belongs to her father. In youth, she belongs to her husband. When her lord is dead, she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. And these words are a shame, because these words should never ever have been spoken.
0: Janendra, my colleague, now joins me. Like Janendra, Rahul Gandhi's words clearly an outreach to Gen Z, but the BJP, one after the other, you have lead

0: and BJP is targeting him for that, for quoting Manu Smriti. We should not forget that even Manu Smriti is quoted in Dalit politics also, and it is considered as anti-Dalit. Congress is happy that BJP is reacting on the same lines and in trying to corner Rahul Gandhi. Actually, they are reacting on the same agenda in that program in Pune. Rahul Gandhi not only quoted from Manu Smriti, but he also played some bites of Prime Minister, RSS chief, and also GOP chief minister, and claimed that like Manu Smriti, these leaders are also patronizing patriarchy. So, in a way, Rahul Gandhi is targeting to appeal Gen Z, appeal the 50% voter, 50% population, that is the women of this country. And likewise, BJP is reacting. They are, no doubt, they are trying to corner Rahul Gandhi, but Congress is saying that BJP is taking our messages to masses, to women, and in that way, the motive of the program is successful.
1: All right, thank you for joining me live. We'll have to wait and watch and see how far this face-off continues between Rahul Gandhi and the BJP. But there's another controversy also brewing. A fish feast at a Congress event in Ayodhya has triggered another political row. With the event taking place during the month of Sawan, the event was organized by Congress leader Ram Nihal Nishad, held to welcome Congress State President Ajay Rai. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath hit out at the Congress over fish feast and said, and I'm going to quote him here, who asked them to visit Hanuman Gari? If they wanted to eat fish, they could have simply gone outside Ayodhya to do so. Now, the Congress UP chief, Ajay Rai, has denied allegations of eating fish and said, and I'm going to quote Rai here now, if the chief minister can produce any image of me eating fish, I will resign immediately. Meanwhile, Congress has justified the eating of fish and said, what is wrong in eating fish? And fish is part of the Nishad community tradition.
2: Congress ke log keval विरासत का अपमान ही नहीं करते. कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा, हनुमानगढ़ी में दर्शन करने ले जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं. बेशर्मी की भी एक सीमा होती है. किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में यह है इनका दोहरा आचरण. गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने, तो वो भी शर्मा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में हमारी कौन सी ऐसी प्रजाति हो गई है कि जो वहां मंदिर में राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंग बली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं.
3: अयोध्या आप पहुंचते हैं सर, और हम देखते हैं कि अयोध्या में आपके हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद जिस जगह पर आप गए उस जगह को लेकर इतना विवाद है. आपको तो हमेशा त्रिपुंड लगाए हुए मस्तक पे हमने देखा है, और ये विवाद जो पूरा जुड़कर नॉनवेज से आपसे आता है, कैसे देखते हैं सर?
4: देखिए, मैं गया था दर्शन करने, हनुमान जी का दर्शन किया, हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, उसके बाद भगवान राम के दर्शन हम लोगों ने किए, और उसके बाद जो कार्यक्रम आयोजन किया था राम लियाल निषाद जी ने, निषाद समाज का, उनके कार्यक्रम में गया, और वहाँ पर स्वागत समारोह हुआ. स्वागत समारोह में बरसात हुई, बरसात के बाद हम लोग घर आए. बाद में पता चला कि वहाँ पर उन्होंने अपने समाज के लिए वहाँ पर मछली भोज का आयोजन किया था, अपने समाज के लिए. तो निषाद समाज का तो भोजन ही है मछली. हाँ. वो उनको पकड़ते हैं, बेचते हैं, उनको शुभ काम में भी, शादी विवाह में, हर जगह उसका इस्तेमाल करते हैं. तो निश्चित तौर से हम लोग वहाँ गए, और वहाँ से हम लोग वापस आए. बाद में पता चला कि उन्होंने अपना कार्यक्रम रखा था और अपने समाज के लिए रखा था. निषाद समाज निश्चित तौर से मछली और उनका इनके साथ जुड़ाव है.
3: अच्छा, मुख्यमंत्री जी आज निशाने पर आपको ले रहे हैं, कह रहे हैं बेशर्मी है, अगर खाना ही था तो फिर मंदिर क्यों गए?
4: मैं इसका मतलब कि योगी जी खाते हैं, भाजपा के लोग खाते हैं, क्योंकि वो तो भी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का वीडियो आया, फोटो आया, नितिन नवीन साउथ में नॉनवेज खा रहे हैं, बाकायदे टंगरी तोड़ रहे हैं. जब बाद में पूछा, हम लोगों ने सवाल किया, तो कहा कटहल खा रहे हैं. साउथ में किसी व्यंजन में कटहल का इस्तेमाल नहीं होता. साउथ में फ्रूट के रूप में, फल के रूप में कटहल को खाया जाता है. झूठ बोल रहे हैं. ऐसे ही इनके विधानसभा अध्यक्ष हैं, राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं, कह रहे हैं एडिट किया हुआ है. तो निश्चित तौर से मुख्यमंत्री जी, मैं इतना ही कहना चाहूँ, मुख्यमंत्री जी ये बात कह रहे हैं, साबित करें, फोटो दिखा दें, वीडियोस दिखा दें, मैं तैयार बैठा हूँ इस्तीफा देने के लिए. नहीं तो फिर योगी जी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, अगर प्रमाणित नहीं कर प्रमाणित

0: नहीं कर पाएंगे, तो इस्तीफा देकर इनको, क्योंकि मठ में तो लोग स्वीकार इनको करेंगे नहीं अब, क्योंकि मुख्यमंत्री झूठे हो साबित हो गए, तो इनको पूरी, इनके अपने घर गांव जाना पड़ेगा, घर जाना पड़ेगा।
1: आप ये सवाल उठाइए कि क्यों उठाया जाता है ये मुद्दे, ताकि पेपर लीक पे बात नहीं हो। चंदा चोरी अयोध्या के लिए, अगर आज आप अयोध्या का नाम लो तो लोगों के जहन में क्या आएगा? चंदा चोरी। वो हट सकता है क्या ये माछभात से? बताइए। निषाद जी जो बीजेपी से कांग्रेस में आए, अब उनकी संस्कृति में है, उनके खान पान की उसमें है, पद्धति में, कि माछभात खाते हैं। नागपुर वालों को लगता है कि नहीं खाना चाहिए। अब किसी के घर आप जाओगे, वो स्वागत में आपके लिए कुछ रखेगा, तो आप उस पर आपत्ति जताओगे, आप मत खाइए। हमारे अजय राय जी तो वैसे भी वेजिटेरियन है, छोड़िए उनकी बात, छोड़िए नहीं भी होते वेजिटेरियन तो क्या उसमें गलत है? हमें नहीं समझ में आता कि इतने बचकाने और मूर्ख विवाद क्यों लाए जाते हैं। क्या इस देश को ये लोग वाकई मूर्ख समझते हैं?
2: भोजन पर भी आप पूछोगे, आप डोंट, मेरे उस वक्त बंद करो। अगर भोजन पे आप कमेंट करना चाहते हो तो मैंने, नहीं नहीं नहीं, भारत वर्ष में 1926 जनवरी 1950 को जब से संविधान लागू हुआ है, कोई कुछ भी खा सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, कहीं पूजा कर सकता है, सभी लोग स्वतंत्र हैं। इस पर कमेंट करने का अभी आप पत्रकारिता जा करके सीख लीजिएगा, उसके बाद हमारे पास आइएगा। भारतीय संविधान को आप लोग तीनों लोग पढ़ लीजिए, कहिए तो मैं भारतीय संविधान की प्रति दिखा दूंगा। ये निषाद समाज का मौलिक अधिकार है, अगर आप बोलना चाहते हो मछली मारना मछली खाना, इसमें बुराई क्या है भाई?
3: मैं खुद उस प्रोग्राम में कल वहां था। सुबह अजय राय जी और मैं पहले हनुमानगढ़ी गए, उसके हम श्री राम मंदिर गए, वहाँ हमने प्रार्थना करी कि जितने भी लोग जिन्होंने चंदा चढ़ावे की चोरी करी है, श्री राम भगवान उनको सही सजा दें। उसके बाद वो निषाद कम्युनिटी का प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में हम लगभग 3:07 में पहुँचे और 3:50 में हम निकले, क्योंकि वह बारिश बहुत तेज़ हो गई थी। निषाद कम्युनिटी भारतीय जनता पार्टी के उनमें नेता भी हैं, वो मछुआरे लोग हैं, वो मच्छी खाते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी निषाद कम्युनिटी के अगेंस्ट है? क्या अजय राय जी ने खाना खाया? क्या राजेंद्र पाल गौतम जी ने खाना खाया? क्या हमने खाना खाया?
4: कांग्रेस से पूछना चाहिए कि वो मंदिर भी जाएंगे और मछली भी खाएंगे। हम कह रहे हैं निषाद तो सब है, उत्तर बाहरी है, वो गरीब है, उजड़ा है, उसका परंपरा है मछली खाना, मछली तो हर समय खाएगा। उठे कांग्रेस जाल फेंक कर निषादों को मछली खिला के फंसाना चाहती, जो फंसने वाले नहीं।
5: बहुत ही दुखद है, अयोध्या धाम हमारा जब पवित्र धाम है, प्रभु रामलला का धाम है, और वहाँ पर इस प्रकार का भोज करना, वो भी सावन के महीने में, ये कांग्रेस की संस्कृति को दर्शाता है।
6: कांग्रेस पार्टी के नेताओं को खुद ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी धार्मिक नगरी में हो सके तो नॉन वेजिटेरियन फूड से वेलकम ना करें, उसके और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मेरे ख्याल से ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं का हिंदू धर्म के लोगों को चिढ़ाने जैसी कार्रवाई है, जो उचित नहीं।
7: चर्चा में बने रहने के लिए वो बहुत से लोग सावन में अपना मछली भोज कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग हैं भाई, अब वो धर्म को नहीं मानते हैं, धर्म के नाम पर ढोंग रचते हैं।
8: Moving on to a disturbing incident from the state of Maharashtra, where a massive fire broke out at the NICU facility of the District Women Hospital in Maharashtra's Amravati, killing 3 infants. The fire reportedly broke out at 3:30 this morning on the third floor after ventilator explosion. At the time, 39 infants were present in the ward. Doctors, nurses and hospital staff quickly disconnected equipment and evacuated the remaining babies from the flame. 6 critical infants were shifted to a nearby super speciality hospital, while Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has ordered a probe into the deaths. Meanwhile, a political blame game has erupted over the incident. NCP-SP faction leader Supriya Sule called it a glaring example of systemic negligence demanding a thorough probe and the strictest action. Congress has questioned the ventilator safety, citing a similar incident 2 years ago and raising questions over possible equipment or electrical faults.
9: मुझे जो जानकारी मिले अभी तक 5 बच्चों की डेथ हुई है, ऐसा समझ में आया है, और अभी उनका पोस्टमार्टम करने के लिए मैंने मेरे तरफ से जो टीम लगती है वो अभी वहाँ पे भेज दिए, वो मैं मदद उनको कर रहा हूँ।
10: बन इंजुरीज कितने बच्चों का है
9: डिटेल? मैंने बच्चों को अभी जाके देखा नहीं, मैं उधर जा रहा हूँ अभी, उसके बाद ही मैं इस बारे में आपको बता पाऊँगा कि कितने बच्चों को है।
10: सर, प्राइमा फेशिया क्या लग रहा है कि वेंटिलेटर का ब्लास्ट क्यों हुआ? क्या आमतौर पर आप डॉक्टर हो, इतने साल से आप कर रहे हो, क्या खामी रही होगी, वेंटिलेटर का ब्लास्ट क्यों हुआ?
9: मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिकल में ओवरलोड हुआ था क्या, जब इलेक्ट्रिशियन किया गया, इतने इंस्ट्रूमेंट अटैच किए गए तो वो भी देखना जरूरी है, वायरिंग बराबर थी कि नहीं, मशीन अच्छी क्वालिटी की परचेस की गई कि नहीं, क्या उसमें कुछ लो क्वालिटी की थी, वो भी जांच में का विषय रह सकता है। रात को ड्यूटी पे जो भी स्टाफ था वो विजिलेंट था कि नहीं, ऐसी घटना घड़ी तो इमीडिएटली बाकी बच्चों की जान बचाना अपना फर्ज था, तो वो उसमें कोई दिरंगाई हुई है क्या, लेट हुई क्या है कि ख्याल नहीं था, कोई सोए थे क्या, ये जब सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब चेक करना चाहिए, उनके जवाब लेना चाहिए।
11: अगर आग लगती भी है तो उसकी जो व्यवस्था रहती है, स्प्रिंकलर चालू होना चाहिए था इमीडिएट, और ऊपर से वेंटिलेटर ब्लास्ट होता है जब, तो ये क्यों कैसे हुआ? अभी तो ये टेक्निकली जब इंक्वायरी होंगी तो उसमें पता लगेगा, और कोई दोषी आया, दोषी मिला तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, इतना पक्का है। क्योंकि एक माँ के नाते मैं ये बोल सकती हूँ कि 9 महीने गर्भ में रखने के बाद अगर बच्चे के साथ में ऐसी दुर्घटना होती है तो उस माँ को और उस परिवार को पता है कि उसका क्या दुख क्या होता है करके।
12: अमरावती में 3 छोटे बच्चों की वहाँ पे जल के मृत्यु हुई है, बहुत ही दर्दनाक ऐसी घटना है। कुछ साल पहले भंडारा में इसी प्रकार की घटना घटी थी 2021 में, उसमें 10 बालक मृत्यु के वहां पे गिर गए थे। कहने का मतलब है कि राज्य शासन कमेटी के गठन करती है, जो तज्ञ लोग है उसका उसके बारे में अभ्यास करते हैं, अपना अहवाल देते हैं, और अहवाल देने के बाद में उसके अहवाल के ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं करती, मतलब अहवाल ऐसी पड़ा है, तो तज्ञ कमेटी बैठाने का मतलब क्या? फिर
13: फायर ऑडिट के लिए जिस तरह से भंडारा में और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जिस तरह से घटनाएं हुई थी, उसके बाद सरकार ने बहुत कठोर ऐसा निर्णय लिया है। बॉम्बे नर्सिंग एक्ट के माध्यम से जिस तरह से हम परमिशन देते हैं, तो सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, फायर ऑडिट कंपलसरी होना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग परमिशन देते हैं। तो अगर फायर ऑडिट होता है तो ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर इसमें कुछ जिस तरह से जो घटना हुई उसकी एक्चुअली रीजन क्या है, ये भी हमें टेक्निकल विंग के माध्यम से अगर जांच करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि इसमें किसी का दोष है। जिस तरह से यूटिलाइज किया हुआ मटेरियल या जो परमिशन है, वो परमिशन के बारे में भी कुछ योग्य अयोग्य काम हुआ है, उसके बारे में भी हमें पता चलेगा, और उसके बाद हम लोग ये सभी जिस तरह से घटना हुई है उसमें अगर किसी का दोष है तो उस पर भी हम कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे।
14: आग बुझाने वाली जो यंत्रणा रहती है वो यहाँ पे सुसज्ज नहीं थी, इसलिए ये आग बढ़ी। और एक इन्वर्टर फटता है तो फिर कहीं ना कहीं तो कमी रही है, और जो इन्वर्टर का सप्लायर है या इलेक्ट्रिक के कनेक्शंस है, इसमें क्या फॉल्ट फाइंडिंग्स है, ये क्यों नहीं देखा गया? नए बिल्डिंग में नया आईसीयू है, ये इस इंफ्रा में यदि गरीबों के बच्चे मर रहे होंगे तो जिम्मेदारी तो सरकार की ही है ना। ये बच्चे जो गुजर गए उनको कंपेंसेशन बड़े पैमाने पे देना चाहिए, जो सप्लायर्स होंगे या जो दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
8: माई कॉलिग सुजाता नाउ जॉइन्स मी लाइव। सुजाता, अनफॉर्चुनेटली व्हेन इट कम्स टू इंसिडेंट्स सच एज द वन वी आर रिपोर्टिंग, the political blame game even begins before there's any accountability really in such cases. I want to understand from you, where does the interrogation, the investigation stand as we speak?
15: Well, yes, like you mentioned before, the blame game has already begun into this unfortunate incident, and the opposition here is calling this as a civic and a public health infrastructure apathy. Whereas the government on one end has already begun its work, where they have ordered an audit into the electrical tech shift of this entire hospital, as well as because this was a new ward that had been set up. How did the smoke occur? How did it led to this electrical damage is also currently being investigated. What we know so far is that an inquiry has been ordered, a high-level inquiry has been ordered by the authorities to understand and estimate the situation. Whereas, like we know that all of the leaders as well as politicians have already begun visiting the site and expressed their views onto cameras. But again, it is the 3 infant babies that have lost their life because of this incident that took place into a unit that was newly set up. It was the new infant intensive care unit the special unit that was set up for these infants. There were a total of 49 infants that were kept in, out of which three lost their lives. Six of them are currently into a special referral hospital, and yet on one end the government is trying to assess the situation, and action will be taken accordingly, is what they have assured to the people, and ex gratia too will be announced, is what they have said so far. Back to you.
8: Thanks for joining me live. This is Sujata. We're going to move on now to another disturbing story, a shocking murder case in the state of Haryana where a woman is accused of killing her husband and then cutting open his abdomen. The post-mortem revealed that Rajesh's abdomen had been cut open to around 35 centimeters. His intestines had come out, while a substantial portion of his liver and right kidney were reportedly missing. His landlord allegedly caught Vimla, the wife, putting the intestines into a bag. She then panicked and jumped from the terrace. She survived the fall and is currently undergoing treatment. Three knives were recovered from the crime scene, and forensic evidence has also been collected. Police are yet to establish the motive and are investigating the couple's relationship, previous disputes, and the circumstances surrounding the killing. In the latest news, Delhi NCR is witnessing heavy spells of rain with waterlogging and traffic snarls reported across several parts of the capital and the National Capital Region. From Sangam Vihar to Barapulla, vehicles are crawling through waterlogged stretches. As the downpour continues, the rain has disrupted daily life, with pedestrians struggling to navigate flooded stretches and shopkeepers dealing with water accumulating outside their establishments. The rain has also disrupted air travel, with 14 flights diverted from the Delhi airport so far.
16: The national capital has been witnessing spells of intense rainfall since the past 1 hour. We are showing you the visuals from Delhi's Janpath area, where you can see that near the Tibet market, in heavy waterlogging can be seen here, which is causing a lot of troubles for the shopkeepers here at this very place. You can clearly see this is not the first time that waterlogging has been reported here. Clearly, the drains have not been desilted, according to some of the shopkeepers who have, whose shop is here. We can speak to some people also. Sir, dekh rahe hain, is tarike se pani jam gaya hai yahan par. Pehli baar aisa nahi hua hai. Kai baar hum yahan par aate hain to dekhte hain is tarike se waterlogging hota hai. Kitni dikkat hoti hai isse?
17: Ji ji, lot of dikkat. Pani sadkon ke andar, dukanon ke andar, chhatein tapak rahi hain. Kitne saal se hum suffering kar rahe hain. Nobody care.
18: हर साल दुकान में पानी घुस जाता है. हालांकि इस बार इन लोगों ने सुविधा करी है, नाले में वो पंप वगैरह लगा रखा है, मगर नहीं जा रहा. पंप भी खराब है, एक पंप चल रहा है, बाकी जाम है सारा, पानी जा नहीं रहा.
16: See, this is not the only area where water logging like this is being reported. We're showing you the visuals from Janpath, where we can clearly see knee deep water logging that can be seen in this very area, and people who are struggling to wade through these waters to in fact reach their offices and designated places.
8: On that note, we slip into short break. News and updates will continue here on Breaking Ground in moments from now. Stay tuned. BJP slams Rahul Gandhi, Uttar Pradesh Chief Minister. Tamil Nadu Chief.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: सबका राजा आर्थोर मसाला।
4: Three decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times

0: वो यहाँ पे गई है।
1: मुझे जो जानकारी मिले अभी तक 5 बच्चों की डेथ हुई है ऐसा समझ में आया है, और अभी उनका पोस्टमार्टम करने के लिए मैंने मेरे तरफ से जो टीम लगती है वो अभी वहाँ पे भेज दिए, वो मैं मदद उनको कर रहा हूँ।
0: बर्न इंजुरीज कितने बच्चों का है
1: डिटेल मैंने बच्चों को अभी जाके देखा नहीं, मैं उधर जा रहा हूँ अभी, उसके बाद ही मैं इस बारे में आपको बता पाऊंगा कि कितने बच्चों को है।
0: सर प्राइमा फेशिया क्या लग रहा है कि वेंटिलेटर का ब्लास्ट क्यों हुआ? क्या आमतौर पर आप डॉक्टर हो, इतने साल से आप कर रहे हो, क्या खामी रही होगी वेंटिलेटर का ब्लास्ट क्यों हुआ?
1: मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिकल में ओवरलोड हुआ था क्या, जब इलेक्ट्रिशियन किया गया इतने इंस्ट्रूमेंट अटैच किए गए तो वो भी देखना जरूरी है, वायरिंग बराबर थी कि नहीं, मशीन अच्छी क्वालिटी की परचेज की गई कि नहीं, या उसमें कुछ लो क्वालिटी की थी वो भी जांचने का विषय रह सकता है। रात को ड्यूटी पे जो भी स्टाफ था वो विजिलेंट था कि नहीं, ऐसी घटना घड़ी तो इमीडिएटली बाकी बच्चों की जान बचाना अपना फर्ज था, तो वो उसमें कोई दिरंगाई हुई है क्या, लेट हुई क्या है कि ख्याल नहीं था, कोई सोए थे क्या, ये जब CCTV फुटेज वगैरह सब चेक करना चाहिए, उनके जवाब लेना चाहिए।
2: अगर आग लगती भी है तो उसकी जो व्यवस्था रहती है, स्प्रिंकलर चालू होना चाहिए था इमीडिएट, और ऊपर से वेंटिलेटर ब्लास्ट होता है जब भी, तो ये क्यों कैसे हुआ? अभी तो ये टेक्निकली जब इंक्वायरी होंगी तो उसमें पता लगेगा, और कोई दोषी आया, दोषी मिला तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, इतना पक्का है। क्योंकि एक माँ के नाते मैं ये बोल सकती हूँ कि 9 महीने गर्भ में रखने के बाद अगर बच्चे के साथ में ऐसी दुर्घटना होती है तो उस माँ को और उस परिवार को पता है कि उसका क्या दुख क्या होता है करके।
3: अमरावती में 3 छोटे बच्चों की वहां पे जल के मृत्यु हुई है, बहुत ही दर्दनाक ऐसी घटना है। कुछ साल पहले भंडारा में इसी प्रकार की घटना घटी थी 2021 में, उसमें 10 बालक मृत्युमुखी वहां पे गिर गए थे। कहने का मतलब है कि राज्य शासन कमेटी के गठन करती है, जो तज्ञ लोग है उसका उसके बारे में अभ्यास करते हैं, अपना अहवाल देते हैं, और अहवाल देने के बाद में उसके अहवाल के ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं करती, मतलब अहवाल ऐसी पड़ा है, तो तज्ञ कमेटी बैठाने का मतलब क्या? फिर
4: हायर ऑडिट के लिए जिस तरह से भंडारा में और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जिस तरह से घटनाएं हुई थी, उसके बाद सरकार ने बहुत कठोर ऐसा निर्णय लिया है। बॉम्बे नर्सिंग एक्ट के माध्यम से जिस तरह से हम परमिशन देते हैं, तो सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, फायर ऑडिट कंपलसरी होना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग परमिशन देते हैं। तो अगर फायर ऑडिट होता है तो ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर इसमें कुछ जिस तरह से जो घटना हुई उसकी एक्चुअली रीजन क्या है, ये भी हमें टेक्निकल विंग के माध्यम से अगर जांच करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि इसमें किसी का दोष है। जिस तरह से यूटिलाइज किया हुआ मटेरियल या जो परमिशन है, वो परमिशन के बारे में भी कुछ योग्य अयोग्य काम हुआ है, उसके बारे में भी हमें पता चलेगा, और उसके बाद हम लोग ये सभी जिस तरह से घटना हुई है उसमें अगर किसी का दोष है तो उस पर भी हम कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे।
5: आग बुझाने वाली जो यंत्रणा रहती है वो यहाँ पे सुसज्ज नहीं थी, इसलिए ये आग बढ़ी। और एक इन्वर्टर फटता है तो फिर कहीं ना कहीं तो कमी रही है, और जो इन्वर्टर का सप्लायर है या इलेक्ट्रिक के कनेक्शंस है, इसमें क्या फॉल्ट फाइंडिंग्स है, ये क्यों नहीं देखा गया? नए बिल्डिंग में नया ICU है, ये इस इंफ्रा में यदि गरीबों के बच्चे मर रहे होंगे तो जिम्मेदारी तो सरकार की ही है ना। ये बच्चे जो गुजर गए उनको कंपेंसेशन बड़े पैमाने पे देना चाहिए, जो सप्लायर्स होंगे या जो दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
6: नाउ सैंडविच विद एन अनएक्सपेक्टेड साइड ऑर्डर ऑफ अ लाइव वर्म। अ डाइनर एट अ हाई एंड रेस्टोरेंट गुरुग्राम स्पॉटेड द क्रॉलर ओनली आफ्टर ही'd ईटन ऑलमोस्ट हाफ ऑफ हिज सैंडविच व्हेन ही सॉ दैट वर्म क्रॉलिंग इनसाइड। द वीडियो रिकॉर्डेड बाय द कस्टमर शोज व्हाट अपीयर्स टू बी अ व्हाइट वर्म क्रॉलिंग ऑन द मीट इनसाइड द सैंडविच। नाउ दिस वीडियो हैज सिंस गॉन वायरल एंड इट्स पुट द स्पॉटलाइट ऑन फूड हाइजीन एट दिस अपस्केल ईटरी। द रेस्टोरेंट हैज अपोलोजाइज्ड टू द डाइनर फॉलोइंग द इंसिडेंट, बट द क्वेश्चन रिमेन्स, हाउ डिड अ लाइव वर्म मेक इट टू द sandwich in the first place? And that is what's really shocking, given that, you know, high standards are expected from this restaurant. This incident comes as several food businesses have faced action over alleged hygiene and food safety violations, especially in Maharashtra, following an intense crackdown by the Food and Drug Administration. All right, moving on to other news now, and Manchester City superstar Erling Haaland is used to being the center of attention on the football pitch, but was in the limelight for a different reason altogether. The Norwegian soccer star, who's 26 years old, cut off his signature long blonde hair, revealing he now has a buzz cut in a video posted on Instagram on Sunday. Haaland detailed the process in a vlog on his YouTube channel, explaining that he'd been considering the move after Norway's participation at this summer's World Cup. Here's a report.
7: You don't have to do this.
8: No, I'm ready.
9: Erling Haaland really said, new season, new personality. Erling Haaland has entered the new season with a brand new look. And this time, he's left the long blonde locks behind. The Manchester City goal machine has officially gone buzz cut. Haaland shows off the transformation just ahead of the new Premier League season. And let's be honest, he looks like a completely different player. The Norwegian says he planned to cut his hair after the 2026 World Cup. But well, he was too busy being Haaland. And there was just one tiny problem. Zlatan Ibrahimovic once told him, never cut your hair. Your strength is in your hair.
10: Zlatan told me, never cut your hair because your strength is in your hair. I'm a bit nervous.
9: So Haaland had one concern. Hope I don't lose my powers. But he still went for it, saying he wanted that just left the military look. And the internet, it immediately goes to work. One fan says, Haaland has gone from Viking striker to academy prospect. Another asks, did the haircut just nerf his football powers? But Haaland isn't ready to retire the Viking image just yet. His defense? Even Vikings wore short hair. So it's new hair, new season, new look. But here's the real test. Can the buzz cut deliver the same old cold storm? Samira Seth for NDTV.
10: That was it. Please let me know what you think.
11: Rang rang rang rang rang rang rang rang rang rang rang rang rang rang rang rang rang rang rang rang rang rang
12: rang rang rang rang rang rang rang rang
13: वाओ मामा क्या स्वाद है
14: अरे मेरे राजा
15: सबका राजा आग प्योर मसाला
16: Three decades of watching the world change of asking the questions that couldn't wait of telling the stories that couldn't be ignored of holding the line when it mattered most. Times change. Our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV. When it really matters.
17: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
16: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
18: Meetha. या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज
19: We are turning a page in Nepal's political economy on the bedrock of good governance and bold reforms we want to accelerate the pace of economic catch up
20: in rapidly changing global landscape Foreign policy must be anchored in strategic clarity and shared prosperity.
21: Hello, I'm Shashi Tharoor, and beyond statecraft and former treaties lies the true heart of our partnership.
8: our deeply rooted cultural diplomacy and people-to-people bonds.
14: I look forward to sharing our vision for industrial cooperation at NDTV World Aviksha.
21: Seamless trade and strategic cross-border investments are real drivers of modern growth.
22: Understanding the past and present is the key to unlocking the future in India-Nepal ties.
23: Join me at NDTP World Aviksha, Ideas Across Border, in Kathmandu on August 27th as we explore Nepal's role in changing the world. Don't miss it.
24: Across the country.
25: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Yeah. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.

0: राहुल जी, एक राहुल गांधी के रूप में आपसे देश बहुत अपेक्षा नहीं करता है, कोई अपेक्षा नहीं करता है, लेकिन भारत की संसद में, भारत की सर्वोच्च पंचायत में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपको देश के लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही बनाता है। आपने भारत के संविधान की शपथ ली थी और संविधान की शपथ लेकर के आप भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं।
1: कांग्रेस पार्टी के एक अहम नेता ने महिलाओं और महिलाओं के नेतृत्व के समर्थन की बात की है। मैं उनसे कहना चाहती हूँ विनम्रता पूर्वक, कृपया प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम को कि देश की महिलाओं को संसद में नेतृत्व करने के लिए 33% आरक्षण का बिल त्वरित रूप से लागू हो, इस प्रयास में प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें।
2: राहुल गांधी शुड फर्स्ट ट्रैश द हिपोक्रेसी बिफोर ही वैक्सेस एलोक्वेंट स्लोगन्स लाइक स्मैश द पेट्रियार्की, बिकॉज the track record of the Congress party is really dismal when it comes to women empowerment. There are zero women ministers in both Karnataka and Himachal Congress led governments.
3: How many women have been presidents of the BJP? Give me one name. We've had 5 women presidents. We gave the first woman prime minister. We gave the first woman president in this country. So please ask them to shut up. Number one. Number two, who pioneered, championed the cause of women's reservation in parliament? Sonia ji kept writing letters, kept fighting for it, kept building consensus when we were in power. 2023, because of all these efforts, the women's bill got passed in the parliament September 20th and 21st in Lok Sabha and Raj Sabha, and then went to the president. From 2023 to April 2026, the BJP kept sitting on the bill, didn't even notify. Why? Now this shows the intention.
4: Women have been very much liberated, and India as a country, immediately after independence, after inducting our constitution, we were one of the pioneers in giving universal suffrage, one person, one vote, where women were also given vote, where women were also equally treated when it comes to voting. Now we are in a stage where we have to take women to the next stage, where women are very much well equipped in terms of education and skills. And that is why Rahul ji has clearly boosted the motivated women to get out of the clutches of men and be more independent.
5: Well, let's go across to Janendra now for more on this story. And Janendra, is becoming, you know, bigger and bigger controversy. First you had Smriti Irani hitting out, now you have the UP chief minister also hitting out at Rahul Gandhi.
6: Yes, but the Congress thinks that though BJP is attacking Rahul Gandhi, but the way BJP is attacking, it is actually taking the message to the masses, especially the women voters of the country. Because Rahul Gandhi clearly attacked patriarchy and attacked also the Manu Smriti. And the way BJP is attacking Rahul Gandhi on this thing, Congress sources are saying that there is nothing to worry, and actually BJP is exposing itself because Rahul Gandhi talked about women participation, and he appealed to women to come out of the cages and break the cages. So actually Rahul Gandhi advocated for the women liberty and their participation and their rights. So Congress is not looking, seeing this as controversy, and it is actually feeling that the more BJP attacks Rahul Gandhi, more Rahul Gandhi is setting the agenda. And as far as the Manu Smriti remarks on Manu Smriti is concerned, Congress thinks that not only Manu Smriti cited as anti-women over some reference, but also in Dalit politics also Manu Smriti is is taken negatively. So in that sense, also Congress thinks that if BJP is cornering Rahul Gandhi or Manu Smriti, then ultimately in this game, Congress will get benefit, be it Dalit vote sentiments or of the sentiments of the 50% population of the country.
5: All right, so the Congress, they're hitting back at the BJP's criticism of Rahul Gandhi. Thanks so much, Janendra. And let's just listen into what Rahul Gandhi said at that event when he was speaking on the Manu Smriti.
7: Manu Smriti says, in childhood, a female belongs to her father. In youth, she belongs to her husband. When her lord is dead, she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manu Smriti. And these words are a shame, because these words should never ever have been spoken.
5: And more controversy involving the Congress party. A fish feast at a Congress event in Ayodhya has triggered a big row, with the event taking place during the month of Sawan. The event was organized by Congress leader Ram Nihal Nishad, and it was held to welcome Congress State President Ajay Rai. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has hit out at the Congress over this and said who asked them to visit Hanuman Gadi. If they wanted to eat fish, they could have simply gone outside Ayodhya to do so. Now, Congress UP Chief Ajay Rai, on his part, has denied allegations of eating fish. He said if Chief Minister can produce any image of him eating fish, he will resign. He's also questioned that, you know, and the Congress has justified the eating of fish, also saying that what is wrong in eating fish, and fish is part of the Nishad community tradition. That is what the Congress leader who organized this, who belongs to the Nishad community, which is a community of fishermen, had to say. Listen in.
0: Congress ke log keval विरासत का अपमान ही नहीं करते. कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा, हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं. बेशर्मी की भी एक सीमा होती है. किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में यह है इनका दोहरा आचरण. गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने, तो वो भी शर्मा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में हमारी कौन सी ऐसी प्रजाति हो गई है कि जो वहां मंदिर में राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंग बली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं.
8: अयोध्या आप पहुंचते हैं सर, और हम देखते हैं कि अयोध्या में आपके हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद जिस जगह पर आप गए उस जगह को लेकर इतना विवाद है. आपको तो हमेशा त्रिपुंड लगाए हुए मस्तक पे हमने देखा है, और ये विवाद जो पूरा जुड़कर नॉनवेज से आपसे आता है, कैसे देखते हैं सर?
9: देखिए, मैं गया था दर्शन करने, हनुमान जी का दर्शन किया, हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, उसके बाद भगवान राम के दर्शन हम लोगों ने किए, और उसके बाद जो कार्यक्रम आयोजन किया था रामलाल निषाद जी ने, निषाद समाज का, उनके कार्यक्रम में गए, और वहाँ पर स्वागत समारोह हुआ. स्वागत समारोह में बरसात हुई, बरसात के बाद हम लोग घर आए. बाद में पता चला कि वहाँ पर उन्होंने अपने समाज के लिए वहाँ पर मछली भोज का आयोजन किया था अपने समाज के लिए. तो निषाद समाज का तो भोजन ही है मछली. हाँ. वो उनको पकड़ते हैं, बेचते हैं, उनको शुभ काम में भी, शादी विवाह में, हर जगह उसका इस्तेमाल करते हैं. तो निश्चित तौर से हम लोग वहाँ गए, और वहाँ से हम लोग वापस आए. बाद में पता चला कि उन्होंने अपना कार्यक्रम रखा था और अपने समाज के लिए रखा था. निषाद समाज निश्चित तौर से मछली और उनका इनके साथ जुड़ाव है.
8: अच्छा, मुख्यमंत्री जी आज निशाने पर आपको ले रहे हैं, कह रहे हैं बेशर्मी है, अगर खाना ही था तो फिर मंदिर क्यों गए?
9: मैं इसका मतलब कि योगी जी खाते हैं, भाजपा के लोग खाते हैं, क्योंकि वो तो भी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का वीडियो आया, फोटो आया, नितिन नवीन साउथ में नॉनवेज खा रहे हैं, बकायदे टंगरी तोड़ रहे हैं. जब बाद में पूछा, हम लोगों ने सवाल किया, तो कहा कटहल खा रहे हैं. साउथ में किसी व्यंजन में कटहल का इस्तेमाल नहीं होता. साउथ में फ्रूट के रूप में, फल के रूप में कटहल को खाया जाता है. झूठ बोल रहे हैं. ऐसे ही इनके विधानसभा अध्यक्ष हैं, राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं, कह रहे हैं एडिट किया हुआ है. तो निश्चित तौर से मुख्यमंत्री जी, मैं इतना ही कहना चाहूँ, मुख्यमंत्री जी ये बात कह रहे हैं, साबित करें, फोटो दिखा दें, वीडियोस दिखा दें, मैं तैयार बैठा हूँ इस्तीफा देने के लिए. नहीं तो फिर योगी जी को मुख्यमंत्री पास से इस्तीफा देना पड़ेगा अगर प्रमाणित नहीं कर पाएंगे तो इस्तीफा देकर इनको, क्योंकि मठ में तो लोग स्वीकार इनको करेंगे नहीं अब, क्योंकि मुख्यमंत्री झूठे हो साबित हो गए, तो इनको पूरी इनके अपने घर गांव जाना पड़ेगा, घर जाना पड़ेगा।
10: आप ये सवाल उठाइए कि क्यों उठाया जाता है ये मुद्दे, ताकि पेपर लीक पे बात नहीं हो। चंदा चोरी अयोध्या के लिए, अगर आज आप अयोध्या का नाम लो तो लोगों के जहन में क्या आएगा, चंदा चोरी।

0: सकता है क्या ये माछ भात से? बताइए, निषाद जी जो बीजेपी से कांग्रेस में आए, अब उनके संस्कृति में है, उनके खान पान की उसमें है, पद्धति में कि माछ भात खाते हैं। नागपुर वालों को लगता है कि नहीं खाना चाहिए। अब किसी के घर आप जाओगे, वो स्वागत में आपके लिए कुछ रखेगा, तो आप उस पर आपत्ति जताओगे, आप मत खाइए। हमारे अजय राय जी तो वैसे भी वेजिटेरियन है, छोड़िए उनकी बात, छोड़िए, नहीं भी होते वेजिटेरियन तो क्या उसमें गलत। हमें नहीं समझ में आता कि इतने बचकाने और मूर्ख विवाद क्यों लाए जाते हैं। क्या इस देश को ये लोग वाकई मूर्ख समझते हैं?
1: उनके जो बड़े नेता हैं, बंगाल के अंदर मछली खा रहे थे, जब बंगाल का चुनाव चल रहा था तो मछली खाई जा रही थी। हम तो ना मछली खाते ना मांस खाते, तो मैं क्या जवाब दे सकता हूँ?
2: भोजन पर भी आप पूछोगे, आप डोंट मेरे उस वक्त वर्णन करो। अगर भोजन पे आप कमेंट करना चाहते हो तो मैंने नहीं, नहीं, नहीं। भारत वर्ष में 1926 जनवरी 1950 को जब से संविधान लागू हुआ है, कोई कुछ भी खा सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, कहीं पूजा कर सकता है, सभी लोग स्वतंत्र हैं। इस पर कमेंट करने का अभी आप पत्रकारिता जा करके सीख लीजिएगा, उसके बाद हमारे पास आइएगा। भारतीय संविधान को आप लोग तीनों लोग पढ़ लीजिए, कहिए तो मैं भारतीय संविधान की प्रति दिखा दूंगा। ये निषाद समाज का मौलिक अधिकार है, अगर आप बोलना चाहते हो मछली मारना मछली खाना, इसमें बुराई क्या है भाई?
3: मैं खुद उस प्रोग्राम में कल वहाँ था। सुबह अजय राय जी और मैं पहले हनुमानगढ़ी गए, उसके हम श्री राम मंदिर गए, वहाँ हमने प्रार्थना करी कि जितने भी लोग जिन्होंने चंदा चढ़ावे की चोरी करी है, श्री राम भगवान उनको सही सजा दें। उसके बाद वो निषाद कम्युनिटी का प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में हम लगभग 3:07 में पहुँचे और 3:50 में हम निकले, क्योंकि वह बारिश बहुत तेज़ हो गई थी। निषाद कम्युनिटी भारतीय जनता पार्टी के उनमें नेता भी हैं, वो मछुआरे लोग हैं, वो मच्छी खाते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी निषाद कम्युनिटी के अगेंस्ट है? क्या अजय राय जी ने खाना खाया? क्या राजेंद्रपाल गौतम जी ने खाना खाया? क्या हमने खाना खाया?
4: कांग्रेस से पूछना चाहिए कि वो मंदिर भी जाएंगे और मछली भी खाएंगे। हम कह रहे हैं निषाद तो सब है, उत्तर बाहरी है, वो गरीब है, उजड़ा है, उसका परंपरा है मछली खाना, मछली तो हर समय खाएगा। ये कांग्रेस जाल फेंक कर निषादों को मछली खिला के फंसाना चाहती, जो फंसने वाले नहीं।
5: बहुत ही दुखद है, अयोध्या धाम हमारा जब पवित्र धाम है, प्रभु रामलला का धाम है, और वहाँ पर इस प्रकार का भोज करना, वो भी सावन के महीने में, ये कांग्रेस की संस्कृति को दर्शाता है।
6: कांग्रेस पार्टी के नेताओं को खुद ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी धार्मिक नगरी में हो सके तो नॉन वेजिटेरियन फूड से वेलकम ना करें, उसके और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मेरे ख्याल से ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं का हिंदू धर्म के लोगों को चिढ़ाने जैसी कार्रवाई है, जो उचित नहीं।
7: चर्चा में बने रहने के लिए वो बहुत से लोग सावन में अपना मछली भोज कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग हैं भाई, अब वो धर्म को नहीं मानते हैं, धर्म के नाम पर ढोंग रचते हैं।
8: Alright, moving on to a tragic incident in Maharashtra when a massive fire broke out in the NICU of the District Women's Hospital in Amravati, killing 3 newborn babies. This was the neonatal ICU. The 3 infants died after suffering severe burns and smoke inhalation. The fire reportedly erupted in the early hours around 3:30 a.m. following a ventilator explosion with 39 infants inside the ward. Doctors and hospital staff quickly evacuated the remaining babies from the flames, and 6 critically affected infants were then shifted to a nearby super speciality hospital. Now, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has ordered a probe. The health minister announced a special inquiry committee to be headed by the divisional commissioner. But the incident has triggered a political blame game. The opposition has hit out over this, pointing at lapses and lack of firefighting equipment. NCP SP MP Supriya Sule called it a glaring example of systemic negligence and demanded strict action. The Congress questioned the ventilator's safety, citing a similar incident 2 years ago and raising questions over the possible firefighting equipment shortage or electrical faults.
9: जो मार जानकारी मिले अभी तक 5 बच्चों की डेथ हुई है, ऐसा समझ में आया है, और अभी उनका पोस्टमार्टम करने के लिए मैंने मेरे तरफ से जो टीम लगती है वो अभी वहाँ पे भेज दिए, वो मैं मदद उनको कर रहा हूँ।
10: बर्न इंजुरीज कितने बच्चों का है?
9: डिटेल मैंने बच्चों को अभी जाके देखा नहीं, मैं उधर जा रहा हूँ अभी, उसके बाद ही मैं इस बारे में आपको बता पाऊंगा कि कितने बच्चों को है।
10: सर, प्राइमा फेशिया क्या लग रहा है कि वेंटिलेटर का ब्लास्ट क्यों हुआ? क्या आमतौर पर आप डॉक्टर हो, इतने साल से आप कर रहे हो, क्या खामी रही होगी, वेंटिलेटर का ब्लास्ट क्यों हुआ?
9: मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिकल में ओवरलोड हुआ था क्या, जब इलेक्ट्रिशियन

0: आ गया, इतने इंस्ट्रूमेंट अटैच किए गए, तो वो भी देखना जरूरी है, वायरिंग बराबर थी कि नहीं, मशीन अच्छी क्वालिटी की परचेज की गई कि नहीं, या उसमें कुछ लो क्वालिटी की थी, वो भी जांचने का विषय रह सकता है। रात को ड्यूटी पे जो भी स्टाफ था वो विजिलेंट था कि नहीं, ऐसी घटना घड़ी तो इमीडिएटली बाकी बच्चों की जान बचाना अपना फर्ज था, तो वो उसमें कोई दिरंगाई हुई है क्या, लेट हुई क्या है कि ख्याल नहीं था, कोई सोए थे क्या, ये जब सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब चेक करना चाहिए, उनके जवाब लेना चाहिए।
1: अगर आग लगती भी है तो उसकी जो व्यवस्था रहती है, स्प्रिंगलर चालू होना चाहिए था इमीडिएट, और ऊपर से वेंटिलेटर ब्लास्ट होता है जब भी, तो ये क्यों कैसे हुआ? अभी तो ये टेक्निकली जब इंक्वायरी होंगी तो उसमें पता लगेगा, और कोई दोषी आया, दोषी मिला तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, इतना पक्का है। क्योंकि एक माँ के नाते मैं ये बोल सकती हूँ कि 9 महीने गर्भ में रखने के बाद अगर बच्चे के साथ में ऐसी दुर्घटना होती है तो उस माँ को और उस परिवार को पता है कि उसका क्या दुख क्या होता है करके।
2: कल अमरावती में 3 छोटे बच्चों की वहां पे जल के मृत्यु हुई है। बहुत ही दर्दनाक ऐसी घटना है। कुछ साल पहले भंडारा में इसी प्रकार की घटना घटी थी 2021 में, उसमें 10 बालक मृत्यु के वहां पे गिर गए थे। कहने का मतलब है कि राज्य शासन कमेटी के गठन करती है, जो तज्ञ लोग है उसका उसके बारे में अभ्यास करते हैं, अपना अहवाल देते हैं, और अहवाल देने के बाद में उसके अहवाल के ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं करती। मतलब अहवाल ऐसी पड़ा है तो तज्ञ कमेटी बैठाने का मतलब क्या? फिर
3: फायर ऑडिट के लिए जिस तरह से भंडारा में और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जिस तरह से घटनाएं हुई थी, उसके बाद सरकार ने बहुत कठोर ऐसा निर्णय लिया है। बॉम्बे नर्सिंग एक्ट के माध्यम से जिस तरह से हम परमिशन देते हैं, तो सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, फायर ऑडिट कंपलसरी होना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग परमिशन देते हैं। तो अगर फायर ऑडिट होता है तो ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर इसमें कुछ जिस तरह से जो घटना हुई उसकी एक्चुअली रीजन क्या है, ये भी हमें टेक्निकल विंग के माध्यम से अगर जांच करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि इसमें किसी का दोष है। जिस तरह से यूटिलाइज किया हुआ मटेरियल या जो परमिशन है, वो परमिशन के बारे में भी कुछ योग्य अयोग्य काम हुआ है, उसके बारे में भी हमें पता चलेगा। और उसके बाद हम लोग ये सभी जिस तरह से घटना हुई है उसमें अगर किसी का दोष है तो उस पर भी हम कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे।
4: आग बुझाने वाली जो यंत्रणा रहती है वो यहाँ पे सुसज्ज नहीं थी, इसलिए ये आग बढ़ी। और एक इन्वर्टर फटता है तो फिर कहीं ना कहीं तो कमी रही है, और जो इन्वर्टर का सप्लायर है या इलेक्ट्रिक के कनेक्शंस है, इसमें क्या फॉल्ट फाइंडिंग्स है, ये क्यों नहीं देखा गया? नए बिल्डिंग में नया आईसीयू है ये, इस इंफ्रा में यदि गरीबों के बच्चे मर रहे हो गए तो जिम्मेदारी तो सरकार की ही है ना। ये बच्चे जो गुजर गए उनको कंपेंसेशन बड़े पैमाने पे देना चाहिए, जो सप्लायर्स होंगे या जो दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
5: अमरावती जिले के जिला सामान्य रुग्णालय का जो स्त्री विमेन हॉस्पिटल है वहाँ का ये NICU न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट है, और इसी में आग लगने से 3 बच्चे झुलसकर उनकी मौत हुई है। यहाँ पर 39 बच्चे थे और उनमें से 3 बच्चों की जान जो है वो इस पूरे मामले में गई है, और 5 से 6 बच्चे जो है झुलसे हैं, उनको अभी उन पर ट्रीटमेंट जारी है, कुछ को बर्न इंजुरीज है और कुछ जो बच्चे हैं उनको अभी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वहाँ पे उनको रखा गया है और उनका इलाज जारी है। ये हम व्यवस्था यहाँ पे देख सकते हैं कि वेंटिलेटर के फूटने से जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ, और 39 बच्चे जो यहाँ पर थे उनको तुरंत यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया, और 3 बच्चों की जान जो है वो यहाँ पे गई है।
6: Now another incident involving public health. A chlorine gas leak triggered panic today in Nagpur's Agodni area, with almost 40 people being hospitalized after being exposed to toxic gas. This leak took place at the Godni Nagar Panchayat water purification plant, affecting both employees who were working at the facility as well as residents living nearby. It was chlorine which is used in water purification. Around 8 to 10 plant employees, 20 to 25 local residents were among those affected and were taken to hospital for treatment. 4 to 5 people were even admitted in the ICU, while others were undergoing treatment for breathing difficulties and other symptoms following the exposure to the toxic gas.
7: सारी टीमों को जब पता चला, सारी टीमें बिल्कुल त्वरित गति से यहाँ पे पहुंचे

0: second changes everything. A minute moves a nation.
1: रंग बना रहे बोझ पेंट्स रंग बना रहे।

0: था इमीजिएट, और ऊपर से वेंटिलेटर ब्लास्ट होता है जब, तो ये क्यों कैसे हुआ? अभी तो ये टेक्निकली जब इंक्वायरी होंगी तो उसमें पता लगेगा, और कोई दोषी आया, दोषी मिला तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, इतना पक्का है। क्योंकि एक माँ के नाते मैं ये बोल सकती हूँ कि 9 महीने गर्भ में रखने के बाद अगर बच्चे के साथ में ऐसी दुर्घटना होती है तो उस माँ को और उस परिवार को पता है कि उसका क्या दुख क्या होता है करके।
1: कल अमरावती में 3 छोटे बच्चों की वहां पे जल के मृत्यु हुई है। बहुत ही दर्दनाक ऐसी घटना है। कुछ साल पहले भंडारा में इसी प्रकार की घटना घटी थी 2021 में, उसमें 10 बालक मृत्यु के वहां पे गिर गए थे। कहने का मतलब है कि राज्य शासन कमेटी के गठन करती है, जो तज्ञ लोग है उसका उसके बारे में अभ्यास करते हैं, अपना अहवाल देते हैं, और अहवाल देने के बाद में उसके अहवाल के ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं करती। मतलब अहवाल ऐसी पड़ा है तो तज्ञ कमेटी बैठाने का मतलब क्या फिर?
2: On that note, we're slipping into a very short break. Come right back, folks. We'll line up for you here on Prime 5.

कि एनडीए के पास पूरा समर्थन है, इसलिए 2023 में बहती गंगा में हाथ धोने के लिए इन्होंने उस समय समर्थन दिया

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो सुबह केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली?
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: हाउ?
2: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
3: इट्स द माही वे।

0: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा, सबका राजा आर्थोर
2: मसाला। जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो सुबह केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली?
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: हाउ?
2: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
3: इट्स द माही वे।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली?
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: How?
2: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to ₹300 every month. Use Bheem app to pay.
3: It's the Mahi way.

0: खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: सबका राजा आर्थर मसाला।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
4: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy.

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: Three decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.
2: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
1: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones, brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।

0: वक्त रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
2: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है ये।
3: कुछ इससे भी अनोखा
2: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद पान मसाला।
4: Across the country,
5: he has tracked the pulse of power from Washington to Korea, witnessed history being made in global capitals and conflict zones, brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
6: सबका राजा आके और मसाला।
7: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony,

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: Three decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.
2: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज

0: matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब न बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमन बनना नहीं आसान है।
2: कैपिटल इनोवेशन लीडरशिप, the three forces shaping India's next business powerhouse. From scaling capital to unlocking the power of AI, from bold ideas to transformational leadership, Mumbai brings together the people building India Inc.'s future. Join policymakers, industry titans, visionary founders at the NDTV Emerging Business Conclave, Mumbai Chapter.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
2: देश का टायर जेके टायर।
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा,
5: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
6: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
7: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
8: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
9: थ्री डेकेड्स ऑफ वॉचिंग द वर्ल्ड चेंज, ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस दैट कुडंट वेट। Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी, आर प्योर वर्म, इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है
2: कुछ इससे भी अनोखा।
1: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद पान मसाला।
3: The front lines of Kargil, the fury of Operation Sindhu,
4: so many attacks,
3: the chaos and cries of disaster zones, the fighter jet cockpits, and the world's most defining interviews.
4: It's incredible.
3: He has seen history break. Live, unfiltered, 20,000 hours of live broadcasting.
4: Welcome to Left, Right and Center.
3: Hard facts.
4: War-struck country.
3: Hard questions.
4: In the Ukraine.
3: 30 years of trust.
5: In the Kargil area.
4: North Ukraine.
6: In France. In Italy.
4: At Srinagar.
6: Zion is the France. History.
7: Parts of Delhi NCR face severe waterlogging following heavy rainfall. Several areas witnessed traffic snarls after an orange alert was issued. Flight operations have also been affected, with at least 15 flights being diverted from the Delhi airport. In Gurugram, work from home advisory has been issued for tomorrow.
8: Electricity bill paid.
9: Really?
8: Your mobile recharge is done.
9: How?
8: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
9: It's the Mahi way.
10: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
11: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
10: अरे मेरे राजा।
12: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
13: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, or 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
14: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
0: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
3: ही हैज ट्रैक्ड द पल्स ऑफ पावर फ्रॉम वॉशिंगटन टू कोरिया, विटनेस्ड हिस्ट्री बीइंग मेड इन ग्लोबल कैपिटल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन्स, ब्रॉट क्लैरिटी टू कॉम्प्लेक्स इश्यूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। आदित्य राज कौल, covering international affairs like no one else, only on NDTV network. Capital, innovation, leadership, the three forces shaping India's next business powerhouse. From scaling capital to unlocking the power of AI, from bold ideas to transformational leadership, Mumbai brings together the people building India Inc.'s future. Join policymakers, industry titans, visionary founders at the NDTV Emerging Business Conclave, Mumbai Chapter.
0: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, aar pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
14: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
15: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तलाशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन ना बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है। जब तक लाजवाब ना बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है। तभी तो रिचमन बनना नहीं आसान है।
3: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
5: रियली
4: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
5: हाउ?
4: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे,
5: इट्स द माही वे।
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।

0: துறை தலைவர் நம்முடைய தளபதி அவர்கள்.
1: இன்றைய சீரம் வருங்கால பீரம் நம்முடைய மாண்பு
2: From the seat of Tamil Nadu, let's now tell you what's happening in Uttar Pradesh. A fresh political showdown is brewing over the issue of caste-based reservation in Uttar Pradesh. A group of students and youth staged a protest at Jantar Mantar demanding changes to the existing reservation system. But the protest has now triggered a sharp political clash. Uttar Pradesh Deputy Chief Minister Brijesh Pathak has met the protesting students and backed their right to raise concerns. But the opposition has strongly objected to the government's outreach to the protesters. Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav said that reservation is the right of backward communities and asserted that the Samajwadi Party will oppose any attempt to revoke the reservation. BSP Chief Mayawati too has hit out at the demand, calling it an inappropriate one. She said that the government should not support such demands. Lots of political reactions coming in on that story.
3: हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। अब इसी बात की सूचना देने के लिए हम आपके बीच में आएंगे और दो दिन के बाद आप लोगों की इच्छा थी कि हम केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखें, तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ में दो दिन के बाद इनकी बैठक होगी, उसमें हम इनको लेकर के जाएंगे और इनसे साथ में बात करेंगे।
4: ये आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज है क्या? संवैधानिक अधिकार है ये। आरक्षण किसी को दी हुई खैरात नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है और दुनिया की कोई ताकत आरक्षण को कतई समाप्त नहीं कर सकती है। और जो लोग इसको समाप्त करने की सोच रखते हैं, कभी समीक्षा के माध्यम से, कभी सुधार के माध्यम से, उनको संभवतः ये पता ही नहीं है कि आरक्षण क्यों जरूरी है।
2: An extremely unfortunate news broke this morning where a massive fire broke out at the NICU of the District Women's Hospital in Amravati, killing three newborn babies. The three infants died after suffering severe burns and smoke inhalation. The fire reportedly erupted around 3:30 a.m. following a ventilator explosion with 39 infants inside the ward. Doctors and hospital staff quickly evacuated the remaining babies from the flames. Six critically affected infants were shifted to a nearby super speciality hospital. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis ordered for a probe, while Health Minister announced a special inquiry committee headed by Divisional Commissioner in the case. The incident has also triggered a political blame game, with the NCP SP MP Supriya Sule calling it a glaring example of systematic negligence and demanded strict action, pointing to serious lapses. While the Congress questioned the ventilator's safety, citing a similar incident 2 years ago and raising questions over possible firefighting equipment shortage or even electrical faults.
5: अमरावती जिले के जिला सामान्य रुग्णालय का जो स्त्री विमेन हॉस्पिटल है, वहाँ का ये NICU न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट है और इसी में आग लगने से तीन बच्चे झुलसकर उनकी मौत हुई है। यहाँ पर 39 बच्चे थे और उनमें से तीन बच्चों की जान जो है वो इस पूरे मामले में गई है और 5 से 6 बच्चे जो है झुलसे हैं, उनको अभी उन पर ट्रीटमेंट जारी है। कुछ को बर्न इंजुरीज है और कुछ जो बच्चे हैं उनको अभी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, वहाँ पे उनको रखा गया है और उनका इलाज जारी है। ये हम व्यवस्था यहाँ पे देख सकते हैं कि वेंटिलेटर के फूटने से जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ और 39 बच्चे जो यहाँ पर थे उनको तुरंत यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया और तीन बच्चों की जान जो है वो यहाँ पे गई है।
6: अगर आग लगती भी है तो उसकी जो व्यवस्था रहती है, स्प्रिंगलर चालू होना चाहिए था इमीडिएट और ऊपर से वेंटिलेटर ब्लास्ट होता है जब, तो ये क्यों कैसे हुआ? अभी तो ये टेक्निकली जब इंक्वायरी होंगी तो उसमें पता लगेगा और कोई दोषी आया, दोषी मिला तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, इतना पक्का है। क्योंकि एक माँ के नाते मैं ये बोल सकती हूँ कि 9 महीने गर्भ में रखने के बाद अगर बच्चे के साथ में ऐसी दुर्घटना होती है तो उस माँ को और उस परिवार को पता है कि उसका क्या दुख क्या होता है करके।
7: कल अमरावती में तीन छोटे बच्चों की वहां पे जल के मृत्यु हुई है। बहुत ही दर्दनाक ऐसी घटना है। कुछ साल पहले भंडारा में इसी प्रकार की घटना घटी थी 2021 में। उसमें 10 बालक मृत्युमुखी वहां पे गिर गए थे। कहने का मतलब है कि राज्य शासन कमेटी के गठन करती है, जो तज्ञ लोग है उसका उसके बारे में अभ्यास करते हैं, अपना अहवाल देते हैं, और अहवाल देने के बाद में उसके अहवाल के ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं करती। मतलब अहवाल ऐसी पड़ा है तो तज्ञ कमेटी बैठाने का मतलब क्या? फिर
8: फायर ऑडिट के लिए जिस तरह से भंडारा में और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जिस तरह से घटनाएं हुई थी, उसके बाद सरकार ने बहुत कठोर ऐसा निर्णय लिया है। बॉम्बे नर्सिंग एक्ट के माध्यम से जिस तरह से हम परमिशन देते हैं, तो सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, फायर ऑडिट कंपलसरी होना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग परमिशन देते हैं। तो अगर फायर ऑडिट होता है तो ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर इसमें कुछ जिस तरह से जो घटना हुई उसकी एक्चुअली रीजन क्या है, ये भी हमें टेक्निकल विंग के माध्यम से अगर जांच करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि इसमें किसी का दोष है। जिस तरह से यूटिलाइज किया हुआ मटेरियल या जो परमिशन है, वो परमिशन के बारे में भी कुछ योग्य अयोग्य काम हुआ है, उसके बारे में भी हमें पता चलेगा। और उसके बाद हम लोग ये सभी जिस तरह से घटना हुई है उसमें अगर किसी का दोष है तो उस पर भी हम कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे।
2: What if you went to a very expensive restaurant, ordered a sandwich and met with an unexpected side order? A live worm. A dinner at a high-end restaurant in Gurugram spotted the crawler only after eating almost half of the sandwich. A video that you see on your screens now was recorded by the customer that showed what appears to be a white worm that was crawling on the meat that was there inside the sandwich. The video has since then gone viral, putting the spotlight on food hygiene at the upscale eatery. The restaurant has apologized to the dinner following the incident. But one question remains on how did a live worm make its way into a sandwich at a very posh restaurant in the first place? And while this is happening, what happened at Paul in Gurugram is not an isolated incident, remember. In the last few weeks, we have seen how there are disturbing series of food safety violations, and these are not just roadside eateries, these are international food chains, five-star hotels and upmarket clubs who have all come under the scanner. It has raised serious questions over the safety of what we eat. Just last week, there were cockroaches that were found inside a McDonald's kitchen in Mumbai. As part of the Maharashtra FDA crackdown led by Tukaram Munde, at Domino's outlet in Mumbai and Thane, inspectors reportedly found cockroaches and insects crawling on the pizza dough. And KFC outlets too came under the scanner with food safety and hygiene standards that were found wanting. From worms and rodents to insects, expired food and even the poor storage, the red flags are piling up. The question is simple: how safe is the food that you are being served on your plate? With that, we are moving on to another very concerning news for every citizen of the country. Gurugram, the Millennium City, was once again struggling with a familiar problem on Monday. Heavy rain, waterlogged roads and massive traffic jams. After the mess that was witnessed yesterday, authorities have advised people to work from home today. While several schools have shifted classes online, an hour of intense rain was enough to bring several parts of the city to a standstill today. School buses were stranded with children who were there that were stuck for hours before being rescued, while some students were forced to wade their way through the flooded roads. And these visuals from outside the DLF Magnolia show how badly the rain has once again exposed Gurugram's drainage and civic infrastructure as well. Here is a reaction that's coming in on that story.
9: It is an absolute shame that all of us who live in Gurgaon live in the most pitiable state. We live in a state of absolute miserableness. There are floods every monsoon, and every monsoon promises are made by every government, by every municipal official, that things will be sorted. It doesn't happen. You have no municipal officers available. You have no corporation officials available. You have traffic which is in the worst possible state. And this repeats itself year after year.
2: And well, 1 hour of rain and Gurugram comes to a standstill. Roads turn into rivers, traffic crawls, and residents are once again forced to battle waterlogging.

0: தெரியும்.
1: இப்ப அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம தலைவர் போயிட்டு இருக்கிறாங்க, நேஷனல் லெவல்ல, நேஷனல் லெவல்ல ஒரு லீடர் உருவாக்கிட்டு இருக்காரு. வேற யாரும் கிடையாது, நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் தான், நம்ம அண்ணன் தான். அது இப்பயே வந்து வெரி கிளியராக ஒரு மேண்டேட். அனதர் 2 இயர்ஸ், 2029 பாருங்கள் எப்படி கேட்ட மாற்றங்கள் வரப்போகுதுன்னு பாருங்கள்.
2: நான் புரட்சி தலைவரோடு பயணத்தை மேற்கொண்டவன், புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரோடு, புரட்சி தலைவர் அம்மாவோடும் பயணத்தை மேற்கொண்டேன். இரு தலைவரை பார்த்ததற்கு பிறகு அந்த தலைவர் வழியில் தமிழ்நாட்டை ஆளுகிற சக்தி மட்டுமல்ல, எதிர்கால இந்தியாவை ஆளக்கூடிய சக்தியாக விளங்கக்கூடியவர் தான் தமிழக வெற்றி கழகத்துடைய தலைவர் நம்முடைய தளபதி அவர்கள்.
3: இன்றைய சிஎம், வருங்கால பிஎம் நம்முடைய மாண்புமிகு
4: From the state of Tamil Nadu, let's now tell you what's happening in Uttar Pradesh. A fresh political showdown is brewing over the issue of caste-based reservation in Uttar Pradesh. A group of students and youth staged a protest at Jantar Mantar demanding changes to the existing reservation system. But the protest has now triggered a sharp political clash. Uttar Pradesh Deputy Chief Minister Brijesh Pathak has met the protesting students and backed their right to raise concerns. But the opposition has strongly objected to the government's outreach to the protesters. Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav said that reservation is the right of backward communities and asserted that the Samajwadi Party will oppose any attempt to revoke the reservation. BSP Chief Mayawati too has hit out at the demand, calling it an inappropriate one. She said that the government should not support such demands. Lots of political reactions coming in on that story.
5: हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। अब इसी बात की सूचना देने के लिए हम आपके बीच में आएंगे और 2 दिन के बाद आप लोगों की इच्छा थी कि हम केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखें, तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ में 2 दिन के बाद इनकी बैठक होगी, उसमें हम इनको लेकर के जाएंगे और इनसे साथ में बात करेंगे।
6: ये आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज है क्या? संवैधानिक अधिकार है ये। आरक्षण किसी को दी हुई खैरात नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है और दुनिया की कोई ताकत आरक्षण को कतई समाप्त नहीं कर सकती है। और जो लोग इसको समाप्त करने की सोच रखते हैं, कभी समीक्षा के माध्यम से, कभी सुधार के माध्यम से, उनको संभवतः ये पता ही नहीं है कि आरक्षण क्यों जरूरी है।
4: An extremely unfortunate news broke this morning where a massive fire broke out at the NICU of the District Women's Hospital in Amravati, killing 3 newborn babies. The 3 infants died after suffering severe burns and smoke inhalation. The fire reportedly erupted around 3:30 a.m. following a ventilator explosion with 39 infants inside the ward. Doctors and hospital staff quickly evacuated the remaining babies from the flames. 6 critically affected infants were shifted to a nearby super speciality hospital. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis ordered for a probe, while Health Minister announced a special inquiry committee headed by Divisional Commissioner in the case. The incident has also triggered a political blame game, with the NCP SP MP Supriya Sule calling it a glaring example of systematic negligence and demanded strict action, pointing to serious lapses. While the Congress questioned the ventilator's safety, citing a similar incident 2 years ago and raising questions over possible firefighting equipment shortage or even electrical faults.
7: अमरावती जिले के जिला सामान्य रुग्णालय का जो स्त्री वीमेन हॉस्पिटल है, वहाँ का ये NICU न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट है और इसी में आग लगने से 3 बच्चे झुलसकर उनकी मौत हुई है। यहाँ पर 39 बच्चे थे और उनमें से 3 बच्चों की जान जो है वो इस पूरे मामले में गई है और 5 से 6 बच्चे जो है झुलसे हैं, उनको अभी उन पर ट्रीटमेंट जारी है। कुछ को बर्न इंजुरीज है और कुछ जो बच्चे हैं उनको अभी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, वहाँ पे उनको रखा गया है और उनका इलाज जारी है। ये हम व्यवस्था यहाँ पे देख सकते हैं कि वेंटिलेटर के फूटने से जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ और 39 बच्चे जो यहाँ पर थे उनको

0: And these words are a shame, because these words should never ever have been spoken.
1: And now on to stories that we're tracking from the down south. Tamil Nadu Chief Minister Vijay has announced that the proposed Parandur Airport project will be dropped. This was meant to be Chennai's second greenfield airport. Chief Minister of Tamil Nadu Vijay has said that he stands with the protesters and that he mentions that a new site for the airport will be finalized very soon. The move, remember, comes amid sustained opposition to the Parandur project, with local residents from that area raising concerns over the proposed site. The decision has triggered a political clash within the DMK and the TVK, with MK Stalin questioning the move and stressing that airport's importance for Tamil Nadu's investment and economic growth. The DMK has said that the airport is crucial for the state's growth, while Vijay maintains that the concerns of protesters must be addressed.
2: தொழில் வளர்ச்சி மற்றும் அதற்கான விமான நிலையங்களின் பங்கு பற்றி நான் நன்கு அறிவேன். அதற்கான என்னுடைய முழு ஆதரவும் உண்டு. ஆனால் பரந்தூரில் இந்த திட்டம் அமையக்கூடாது. இந்த திட்டம் குறித்து அரசு மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும். குறைவான விவசாய நிலங்கள் பாதிக்கப்படும் வகையிலும், மக்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்காத வகையிலும் மாற்று இடத்தை தேர்வு செய்ய வேண்டும் என தெரிவித்திருந்தேன். மக்கள் மத்தியிலே நான் அன்றே அறிவித்ததை நிறைவேற்றும் பொருட்டு புதிய விமான நிலையம் அமைப்பது குறித்து உயர் அதிகாரிகளிடமும் துறை வல்லுநர்களிடமும் விரிவாக ஆலோசனை நடத்தினேன். ஏற்கனவே நான் உறுதி அளித்தவாறு பரந்தூரில் புதிய விமான நிலையம் அமைக்க மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள் இந்த அரசால் கைவிடப்படும்.
3: பரந்தூரிலே நீங்கள் இந்த விமான நிலையத்தை அமைப்பதுதான் மிக சரியானதாக அமைந்திருக்கும். ஆனால் இதை நீங்கள் அரசியல் காரணங்களுக்காக இன்றைக்கு மாற்றுவோம். ஒரு திட்டம் நாட்டுக்கு வருகிற பொழுது அதில் அரசியல் செய்யக்கூடாது. அரசியல் காரணங்களுக்காக ஏதேனும் திட்டங்கள் நிறுத்தப்பட்டிருக்கும் என்று சொன்னால் அது நம்முடைய பொருளாதாரத்தை பாதிக்கும்.
4: He cannot drop it. It is the see, Civil Aviation Ministry is in the control of the Government of India, not under Tamil Nadu State. And they had procured space and given it to the Civil Aviation Department. Then how can he stop it? He wanted it to be stopped. He should go to Delhi and speak to the people, ministers, but then finalize it. He cannot announce it. It is the Civil Aviation Ministry which has to announce this.
5: It is true, that's a very bad initiative, because already 70% of the acquisition works and everything has been over. I think they should reconsider it.
1: And with that, there is another issue that's making headlines in the state of Tamil Nadu. This is about TVK's pitch to make Chief Minister Vijay the Prime Minister in 2029. Well, after TVK has stepped up its pitch for Vijay as a potential prime ministerial face, with the party leaders projecting him for a larger national role, former Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin has lashed out as Chief Minister Vijay and said that the change in Tamil Nadu government has ended in disappointment and that this situation needs to be changed. This comes after Tamil Nadu ministers have said that Vijay is headed towards a national political stage, signaling confidence in his growing political profile. Congress has also pushed back against Vijay's and against TVK's Vijay for Prime Minister pitch, maintaining that Vijay cannot be projected as the country's next Prime Minister and taking aim at party's growing national ambitions.
6: இந்த நிலை வருவதற்கு காரணமாக இருந்ததை யார் என்பதை இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவருக்கு புரியல, தெரியல. அதனால தான் ராஜா சொன்ன மாதிரி ஒரு மாற்றம் தமிழ்நாட்டில் ஏற்பட்டு அது ஏமாற்றமாக மாறி இருக்கிறது. லட்சக்கணக்கான மக்கள் செய்த தவறு கோடிக்கணக்கான மக்களை இன்றைக்கு துன்புறுத்தி கொண்டிருக்கிறது.
7: எல்லா பார்ட்டிக்கும் கனவு, அம்பிஷன், ஆசை உண்டு. அதுக்கு ஒன்றும் தடுக்கிறதுக்கு சட்டம்லாம் போட முடியாது. அவங்கவுங்க விருப்பத்தை அவங்கவுங்க சொல்லிக்கிறாங்க. அவங்க கட்சியில் அவங்க அவங்களுடைய அபிமானிய தலைவரை பத்தி சொல்றாங்க. ஆனால் பொலிட்டிக்கல் ரியாலிட்டி என்னன்னு எங்களுக்கு தெரியும்.
8: இப்போ அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம தலைவர் போயிட்டு இருக்கிறாங்க. நேஷனல் லெவலில் ஒரு லீடர் உருவாகிட்டு இருக்காரு. வேற யாரும் கிடையாது, நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் தான், நம்ம அண்ணன் தான். அது இப்பயே வந்து வெரி கிளியரா ஒரு மேண்டேட். அனதர் 2 இயர்ஸ், 2029 பாருங்க, எப்படிப்பட்ட மாற்றங்கள் வரப்போகுதுன்னு பாருங்க.
9: நான் புரட்சி தலைவரோடு பயணத்தை மேற்கொண்டவன். புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரோடு புரட்சி தலைவர் அம்மாவோடும் பயணத்தை மேற்கொண்டேன். இரு தலைவரை பார்த்ததற்கு பிறகு அந்த தலைவர் வழியில் தமிழ்நாட்டை ஆளுகிற சக்தி மட்டுமல்ல எதிர்கால இந்தியாவை ஆளக்கூடிய சக்தியாக விளங்கக்கூடியவர் தான் தமிழக வெற்றி கழகத்துடைய தலைவர் நம்முடைய தளபதி அவர்கள்.
1: From the seat of Tamil Nadu, let's now tell you what's happening in Uttar Pradesh. A fresh political showdown is brewing over the issue of caste-based reservation in Uttar Pradesh. A group of students and youth staged a protest at Jantar Mantar demanding changes to the existing reservation system. But the protest has now triggered a sharp political clash. Uttar Pradesh Deputy Chief Minister Brijesh Pathak has met the protesting students and backed their right to raise concerns. But the opposition has strongly objected to the government's outreach to the protesters. Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav said that reservation is the right of backward communities and asserted that the Samajwadi Party will oppose any attempt to revoke the reservation. BSP Chief Mayawati too has hit out at the demand, calling it an inappropriate one. She said that the government should not support such demands. Lots of political reactions coming in on that story.
10: हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। अब इसी बात की सूचना देने के लिए हम आपके बीच में आएंगे और दो दिन के बाद आप लोगों की इच्छा थी कि हम केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखें तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ में दो दिन के बाद इनकी बैठक होगी, उसमें हम इनको लेकर के जाएंगे और इनसे साथ में बात करेंगे।
11: ये आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज है क्या? संवैधानिक अधिकार है, ये आरक्षण किसी को दी हुई खैरात नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है और दुनिया की कोई ताकत आरक्षण को कतई समाप्त नहीं कर सकती है। और जो लोग इसको समाप्त करने की सोच रखते हैं, कभी समीक्षा के माध्यम से, कभी सुधार के माध्यम से, उनको संभवतः ये पता ही नहीं है कि आरक्षण क्यों जरूरी है।
1: An extremely unfortunate news broke this morning where a massive fire broke out at the NICU of the District Women's Hospital in Amravati, killing 3 newborn babies. The 3 infants died after suffering severe burns and smoke inhalation. The fire reportedly erupted around 3:30 a.m. following a ventilator explosion with 39 infants inside the ward. Doctors and hospital staff quickly evacuated the remaining babies from the flames. 6 critically affected infants were shifted to a nearby super specialty hospital. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis ordered for a probe, while Health Minister announced a special inquiry committee headed by Divisional Commissioner in the case. The incident has also triggered a political blame game, with the NCP SP MP Supriya Sule calling it a glaring example of systematic negligence and demanded strict action, pointing to serious lapses. While the Congress questioned the ventilator's safety, citing a similar incident 2 years ago and raising questions over possible firefighting equipment shortage or even electrical faults.
12: अमरावती जिले के जिला सामान्य रुग्णालय का जो स्त्री विमेन हॉस्पिटल है वहाँ का ये NICU न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट है और इसी में आग लगने से 3 बच्चे झुलसकर उनकी मौत हुई है। यहाँ पर 39 बच्चे थे और उनमें से 3 बच्चों की जान जो है वो इस पूरे मामले में गई है और 5 से 6 बच्चे जो है झुलसे हैं, उनको अभी उन पर ट्रीटमेंट जारी है, कुछ को बर्न इंजुरीज है और कुछ जो बच्चे हैं उनको अभी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वहाँ पे उनको रखा गया है और उनका इलाज जारी है। ये हम व्यवस्था यहाँ पे देख सकते हैं कि वेंटिलेटर के फूटने से जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ और 39 बच्चे जो यहाँ पर थे उनको तुरंत यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया और 3 बच्चों की जान जो है वो यहाँ पे गई है।
13: अगर आग लगती भी है तो उसकी जो व्यवस्था रहती है, स्प्रिंकलर चालू होना चाहिए था इमीडिएट और ऊपर से वेंटिलेटर ब्लास्ट होता है जब भी, तो ये क्यों कैसे हुआ? अभी तो ये टेक्निकली जब इंक्वायरी होंगी तो उसमें पता लगेगा, और कोई दोषी आया, दोषी मिला तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, इतना पक्का है। क्योंकि एक माँ के नाते मैं ये बोल सकती हूँ कि 9 महीने गर्भ में रखने के बाद अगर बच्चे के साथ में ऐसी दुर्घटना होती है तो उस माँ को और उस परिवार को पता है कि उसका क्या दुख क्या होता है करके।
14: कल अमरावती में 3 छोटे बच्चों की वहां पे जल के मृत्यु हुई है। बहुत ही दर्दनाक ऐसी घटना है। कुछ साल पहले भंडारा में इसी प्रकार की घटना घटी थी 2021 में, उसमें 10 बालक मृत्यु के वहां पे गिर गए थे। कहने का मतलब है कि राज्य शासन कमेटी के गठन करती है, जो तज्ञ लोग है उसका उसके बारे में अभ्यास करते हैं, अपना अहवाल देते हैं, और अहवाल देने के बाद में उसके अहवाल के ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं करती। मतलब अहवाल ऐसी पड़ा है तो तज्ञ कमेटी बैठाने का मतलब क्या? फिर
15: हायर ऑडिट के लिए जिस तरह से भंडारा में और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जिस तरह से घटनाएं हुई थी, उसके बाद सरकार ने बहुत कठोर ऐसा निर्णय लिया है। बॉम्बे नर्सिंग एक्ट के माध्यम से जिस तरह से हम परमिशन देते हैं, तो सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, फायर ऑडिट कंपलसरी होना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग परमिशन देते हैं। तो अगर फायर ऑडिट होता है तो ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर इसमें कुछ जिस तरह से जो घटना हुई उसकी एक्चुअली रीजन क्या है, ये भी हमें टेक्निकल विंग के माध्यम से अगर जांच करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि इसमें किसी का दोष है। जिस तरह से यूटिलाइज किया हुआ मटेरियल या जो परमिशन है, वो परमिशन के बारे में भी कुछ योग्य अयोग्य काम हुआ है उसके बारे में भी हमें पता चलेगा, और उसके बाद हम लोग ये सभी जिस तरह से घटना हुई है उसमें अगर किसी का दोष है तो उस पर भी हम कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे।
1: What if you went to a very expensive restaurant, ordered a sandwich and met with an unexpected side order? A live worm. A dinner at a high-end restaurant in Gurugram spotted the crawler only after eating almost half of the sandwich. A video that you see on your screens now was recorded by the customer that showed what appears to be a white worm that was crawling on the meat that was there inside the sandwich. The video has since then gone viral, putting the spotlight on food hygiene at the upscale eatery. The restaurant has apologized to the dinner following the incident. But one question remains on how did a live worm make its way into a sandwich at a very posh restaurant in the first place? And while this is happening, what happened at Paul in Gurugram is not an isolated incident, remember. In the last few weeks, we have seen how there are disturbing series of food safety violations, and these are not just roadside eateries. These are international food chains, 5-star hotels and upmarket clubs who have all come under the scanner. It has raised serious questions over the safety of what we eat. Just last week, there were cockroaches that were found inside a McDonald's kitchen in Mumbai. As part of the Maharashtra FDA crackdown led by Tukaram Munde, at Domino's outlet in Mumbai and Thane, inspectors reportedly found cockroaches and insects crawling on the pizza dough. And KFC outlets too came under the scanner, with food safety and hygiene standards that were found wanting. From worms and rodents to insects, expired food and even the poor storage, the red flags are piling up. The question is simple: how safe is the food that you are being served on your plate? With that, we are moving on to another very concerning news for every citizen of the country. Gurugram, the Millennium City, was once again struggling with a familiar problem on Monday. Heavy rain, waterlogged roads and massive traffic jams. After the mess that was witnessed yesterday, authorities have advised people to work from home today. While several schools have shifted classes online, an hour of intense rain was enough to bring several parts of the city to a standstill today. School buses were stranded, with children who were there that were stuck for hours before being rescued, while some students were forced to wade their way through the flooded roads. And these visuals from outside the DLF Magnolia show how badly the rain has once again exposed Gurugram's drainage and civic infrastructure as well. Here is a reaction that's coming in on that story.
16: It is an absolute shame that all of us who live in Gurgaon live in the most pitiable state. We live in a state of absolute miserableness. There are floods every monsoon. And every monsoon promises are made by every government, by every municipal official.

0: Commission is the right of backward communities and asserted that the Samajwadi Party will oppose any attempt to revoke the reservation. BSP Chief Mayawati too has hit out at the demand, calling it an inappropriate one. She said that the government should not support such demands. Lots of political reactions coming in on that story.
1: हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। अब इसी बात की सूचना देने के लिए हम आपके बीच में आएंगे और दो दिन के बाद आप लोगों की इच्छा थी कि हम केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखें, तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ में दो दिन के बाद इनकी बैठक होगी, उसमें हम इनको लेकर के जाएंगे और इनसे साथ में बात करेंगे।
2: ये आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज है क्या? संवैधानिक अधिकार है ये। आरक्षण किसी को दी हुई खैरात नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है और दुनिया की कोई ताकत आरक्षण को कतई समाप्त नहीं कर सकती है। और जो लोग इसको समाप्त करने की सोच रखते हैं, कभी समीक्षा के माध्यम से, कभी सुधार के माध्यम से, उनको संभवतः ये पता ही नहीं है कि आरक्षण क्यों जरूरी है।
0: An extremely unfortunate news broke this morning where a massive fire broke out at the NICU of the District Women's Hospital in Amravati, killing three newborn babies. The three infants died after suffering severe burns and smoke inhalation. The fire reportedly erupted around 3:30 a.m. following a ventilator explosion with 39 infants inside the ward. Doctors and hospital staff quickly evacuated the remaining babies from the flames. Six critically affected infants were shifted to a nearby super speciality hospital. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis ordered for a probe, while Health Minister announced a special inquiry committee headed by Divisional Commissioner in the case. The incident has also triggered a political blame game, with the NCP-SP MP Supriya Sule calling it a glaring example of systematic negligence and demanded strict action, pointing to serious lapses. While the Congress questioned the ventilator's safety, citing a similar incident 2 years ago and raising questions over possible firefighting equipment shortage or even electrical faults.
3: अमरावती जिले के जिला सामान्य रुग्णालय का जो स्त्री विमेन हॉस्पिटल है, वहाँ का ये NICU न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट है और इसी में आग लगने से तीन बच्चे झुलसकर उनकी मौत हुई है। यहाँ पर 39 बच्चे थे और उनमें से तीन बच्चों की जान जो है वो इस पूरे मामले में गई है और 5 से 6 बच्चे जो है झुलसे हैं, उनको अभी उन पर ट्रीटमेंट जारी है। कुछ को बर्न इंजुरीज है और कुछ जो बच्चे हैं उनको अभी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, वहाँ पे उनको रखा गया है और उनका इलाज जारी है। ये हम व्यवस्था यहाँ पे देख सकते हैं कि वेंटिलेटर के फूटने से जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ और 39 बच्चे जो यहाँ पर थे उनको तुरंत यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया और तीन बच्चों की जान जो है वो यहाँ पे गई है।
4: अगर आग लगती भी है तो उसकी जो व्यवस्था रहती है, स्प्रिंकलर चालू होना चाहिए था इमीडिएट और ऊपर से वेंटिलेटर ब्लास्ट होता है जब भी, तो ये क्यों कैसे हुआ? अभी तो ये टेक्निकली जब इंक्वायरी होंगी तो उसमें पता लगेगा और कोई दोषी आया, दोषी मिला तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, इतना पक्का है। क्योंकि एक माँ के नाते मैं ये बोल सकती हूँ कि 9 महीने गर्भ में रखने के बाद अगर बच्चे के साथ में ऐसी दुर्घटना होती है तो उस माँ को और उस परिवार को पता है कि उसका क्या दुख क्या होता है करके।
5: कल अमरावती में तीन छोटे बच्चों की वहां पे जल के मृत्यु हुई है। बहुत ही दर्दनाक ऐसी घटना है। कुछ साल पहले भंडारा में इसी प्रकार की घटना घटी थी 2021 में, उसमें 10 बालक मृत्यु के वहां पे गिर गए थे। कहने का मतलब है कि राज्य शासन कमेटी के गठन करती है, जो तज्ञ लोग है उसका उसके बारे में अभ्यास करते हैं, अपना अहवाल देते हैं और अहवाल देने के बाद में उसके अहवाल के ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं करती। मतलब अहवाल ऐसी पड़ा है तो तज्ञ कमेटी बैठाने का मतलब क्या? फिर
6: फायर ऑडिट के लिए जिस तरह से भंडारा में और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जिस तरह से घटनाएं हुई थी, उसके बाद सरकार ने बहुत कठोर ऐसा निर्णय लिया है। बॉम्बे नर्सिंग एक्ट के माध्यम से जिस तरह से हम परमिशन देते हैं, तो सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, फायर ऑडिट कंपलसरी होना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग परमिशन देते हैं। तो अगर

0: हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। अब इसी बात की सूचना देने के लिए हम आपके बीच में आएंगे और दो दिन के बाद आप लोगों की इच्छा थी कि हम केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखें, तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ में दो दिन के बाद इनकी बैठक होगी, उसमें हम इनको लेकर के जाएंगे और इनसे साथ में बात करेंगे।
1: ये आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज है क्या? संवैधानिक अधिकार है, ये आरक्षण किसी को दी हुई खैरात नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है और दुनिया की कोई ताकत आरक्षण को कतई समाप्त नहीं कर सकती है। और जो लोग इसको समाप्त करने की सोच रखते हैं, कभी समीक्षा के माध्यम से, कभी सुधार के माध्यम से, उनको संभवतः ये पता ही नहीं है कि आरक्षण क्यों जरूरी है।
2: An extremely unfortunate news broke this morning where a massive fire broke out at the NICU of the District Women's Hospital in Amravati, killing 3 newborn babies. The 3 infants died after suffering severe burns and smoke inhalation. The fire reportedly erupted around 3:30 a.m. following a ventilator explosion with 39 infants inside the ward. Doctors and hospital staff quickly evacuated the remaining babies from the flames. 6 critically affected infants were shifted to a nearby super specialty hospital. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis ordered for a probe, while Health Minister announced a special inquiry committee headed by Divisional Commissioner in the case. The incident has also triggered a political blame game, with the NCP SP MP Supriya Sule calling it a glaring example of systematic negligence and demanded strict action, pointing to serious lapses. While the Congress questioned the ventilator's safety, citing a similar incident 2 years ago and raising questions over possible firefighting equipment shortage or even electrical faults.
3: अमरावती जिले के जिला सामान्य रुग्णालय का जो स्त्री विमेन हॉस्पिटल है, वहाँ का ये NICU न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट है और इसी में आग लगने से 3 बच्चे झुलसकर उनकी मौत हुई है। यहाँ पर 39 बच्चे थे और उनमें से 3 बच्चों की जान जो है वो इस पूरे मामले में गई है और 5 से 6 बच्चे जो है झुलसे हैं, उनको अभी उन पर ट्रीटमेंट जारी है। कुछ को बर्न इंजुरीज है और कुछ जो बच्चे हैं उनको अभी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, वहाँ पे उनको रखा गया है और उनका इलाज जारी है। ये हम व्यवस्था यहाँ पे देख सकते हैं कि वेंटिलेटर के फूटने से जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ और 39 बच्चे जो यहाँ पर थे उनको तुरंत यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया और 3 बच्चों की जान जो है वो यहाँ पे गई है।
4: अगर आग लगती भी है तो उसकी जो व्यवस्था रहती है, स्प्रिंगलर चालू होना चाहिए था इमीडिएट और ऊपर से वेंटिलेटर ब्लास्ट होता है जब, तो ये क्यों कैसे हुआ? अभी तो ये टेक्निकली जब इंक्वायरी होंगी तो उसमें पता लगेगा और कोई दोषी आया, दोषी मिला तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, इतना पक्का है। क्योंकि एक माँ के नाते मैं ये बोल सकती हूँ कि 9 महीने गर्भ में रखने के बाद अगर बच्चे के साथ में ऐसी दुर्घटना होती है तो उस माँ को और उस परिवार को पता है कि उसका क्या दुख क्या होता है करके।
5: कल अमरावती में 3 छोटे बच्चों की वहां पे जल के मृत्यु हुई है। बहुत ही दर्दनाक ऐसी घटना है। कुछ साल पहले भंडारा में इसी प्रकार की घटना घटी थी 2021 में, उसमें 10 बालक मृत्यु के वहां पे गिर गए थे। कहने का मतलब है कि राज्य शासन कमेटी के गठन करती है, जो तज्ञ लोग है उसका उसके बारे में अभ्यास करते हैं, अपना अहवाल देते हैं और अहवाल देने के बाद में उसके अहवाल के ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं करती। मतलब अहवाल ऐसी पड़ा है तो तज्ञ कमेटी बैठाने का मतलब क्या? फिर
6: फायर ऑडिट के लिए जिस तरह से भंडारा में और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जिस तरह से घटनाएं हुई थी, उसके बाद सरकार ने बहुत कठोर ऐसा निर्णय लिया है। बॉम्बे नर्सिंग एक्ट के माध्यम से जिस तरह से हम परमिशन देते हैं, तो सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, फायर ऑडिट कंपलसरी होना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग परमिशन देते हैं। तो अगर फायर ऑडिट होता है तो ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर इसमें कुछ जिस तरह से जो घटना हुई उसकी एक्चुअली रीजन क्या है, ये भी हमें टेक्निकल विंग के माध्यम से अगर जांच करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि इसमें किसी का दोष है। जिस तरह से यूटिलाइज किया हुआ मटेरियल या जो परमिशन है, वो परमिशन के बारे में भी कुछ

0: by super speciality hospital. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis ordered for a probe, while Health Minister announced a special inquiry committee headed by Divisional Commissioner in the case. The incident has also triggered a political blame game, with the NCP SP MP Supriya Sule calling it a glaring example of systematic negligence and demanded strict action, pointing to serious lapses. While the Congress questioned the ventilator's safety, citing a similar incident 2 years ago and raising questions over possible firefighting equipment shortage or even electrical faults.
1: अमरावती जिले के जिला सामान्य रुग्णालय का जो स्त्री वीमेन हॉस्पिटल है, वहाँ का ये NICU न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट है, और इसी में आग लगने से 3 बच्चे झुलसकर उनकी मौत हुई है। यहाँ पर 39 बच्चे थे और उनमें से 3 बच्चों की जान जो है वो इस पूरे मामले में गई है, और 5 से 6 बच्चे जो है झुलसे हैं, उनको अभी उन पर ट्रीटमेंट जारी है। कुछ को बर्न इंजुरीज है और कुछ जो बच्चे हैं उनको अभी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वहाँ पे उनको रखा गया है और उनका इलाज जारी है। ये हम व्यवस्था यहाँ पे देख सकते हैं कि वेंटिलेटर के फूटने से जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ, और 39 बच्चे जो यहाँ पर थे उनको तुरंत यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया, और 3 बच्चों की जान जो है वो यहाँ पे गई है।
2: अगर आग लगती भी है तो उसकी जो व्यवस्था रहती है, स्प्रिंकलर चालू होना चाहिए था इमीडिएट, और ऊपर से वेंटिलेटर ब्लास्ट होता है जब, तो ये क्यों कैसे हुआ? अभी तो ये टेक्निकली जब इंक्वायरी होंगी तो उसमें पता लगेगा, और कोई दोषी आया, दोषी मिला तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, इतना पक्का है। क्योंकि एक माँ के नाते मैं ये बोल सकती हूँ कि 9 महीने गर्भ में रखने के बाद अगर बच्चे के साथ में ऐसी दुर्घटना होती है तो उस माँ को और उस परिवार को पता है कि उसका क्या दुख क्या होता है करके।
3: कल अमरावती में 3 छोटे बच्चों की वहां पे जल के मृत्यु हुई है। बहुत ही दर्दनाक ऐसी घटना है। कुछ साल पहले भंडारा में इसी प्रकार की घटना घटी थी 2021 में, उसमें 10 बालक मृत्यु के वहां पे गिर गए थे। कहने का मतलब है कि राज्य शासन कमेटी के गठन करती है, जो तज्ञ लोग है उसका उसके बारे में अभ्यास करते हैं, अपना अहवाल देते हैं, और अहवाल देने के बाद में उसके अहवाल के ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं करती। मतलब अहवाल ऐसी पड़ा है तो तज्ञ कमेटी बैठाने का मतलब क्या? फिर
4: फायर ऑडिट के लिए जिस तरह से भंडारा में और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जिस तरह से घटनाएं हुई थी, उसके बाद सरकार ने बहुत कठोर ऐसा निर्णय लिया है। बॉम्बे नर्सिंग एक्ट के माध्यम से जिस तरह से हम परमिशन देते हैं, तो सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, फायर ऑडिट कंपलसरी होना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग परमिशन देते हैं। तो अगर फायर ऑडिट होता है तो ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर इसमें कुछ जिस तरह से जो घटना हुई उसकी एक्चुअली रीजन क्या है, ये भी हमें टेक्निकल विंग के माध्यम से अगर जांच करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि इसमें किसी का दोष है। जिस तरह से यूटिलाइज किया हुआ मटेरियल या जो परमिशन है, वो परमिशन के बारे में भी कुछ योग्य अयोग्य काम हुआ है, उसके बारे में भी हमें पता चलेगा। और उसके बाद हम लोग ये सभी जिस तरह से घटना हुई है उसमें अगर किसी का दोष है तो उस पर भी हम कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे।
0: What if you went to a very expensive restaurant, ordered a sandwich and met with an unexpected side order? A live worm. A dinner at a high-end restaurant in Gurugram spotted the crawler only after eating almost half of the sandwich. A video that you see on your screens now was recorded by the customer that showed what appears to be a white worm that was crawling on the meat that was there inside the sandwich. The video has since then gone viral, putting the spotlight on food hygiene at the upscale eatery. The restaurant has apologized to the diner following the incident. But one question remains on how did a live worm make its way into a sandwich at a very posh restaurant in the first place? And while this is happening, what happened at Paul in Gurugram is not an isolated incident, remember. In the last few weeks, we have seen how there are disturbing series of food safety violations, and these are not just roadside eateries. These are international food chains, 5-star hotels and upmarket clubs who have all come under the scanner. It has raised serious questions over the safety of what we eat. Just last week, there were cockroaches that were found inside a McDonald's kitchen in Mumbai. As part of the Maharashtra FDA crackdown led by Tukaram Munde, at Domino's outlet in Mumbai and